अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

श्री रामलला भगवान की, श्री आनंद कंद भगवान की, श्री कौशल्यानंदन भगवान की, श्री दशरथ नंदन भगवान की, श्री कैकेयी नंदन भगवान की, श्री सुमित्रानंदन भगवान की, श्री चारो भैयन की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, श्री काशी विश्वनाथ की, श्री अयोध्या धाम की, श्री सरयू महारानी की, जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, समस्त पूर्वाचार्यों की, सर्व संत वैष्णव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, गो माता की, भारत माता की, प्रातः

ये आकाशवाणी का आराधना चैनल है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी श्रीनगर के बालटाल और पहलगाम से अमरनाथ यात्रा पर विशेष प्रसारण।

आदर आभार अभिनंदन आदाब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग श्रोताओं, आज बुधवार है, 5 अगस्त 2026, पंचांग शक संवत 1948 के श्रावण महीने की सप्तमी तिथि। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आरंभ होता है। आपका उद्घोषक इकबाल कादिर उपस्थित है आज का ये विशेष प्रसारण लेकर। हमारी ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वीकार करें। आज श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का 34वां दिन है। हम सभी यात्रियों की सुरक्षित और सुगम यात्रा की कामना करते हुए आज के इस विशेष प्रसारण को आरंभ करते हैं।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी श्रीनगर के FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज़ ऑन AIR की आराधना चैनल पर भी हम उपलब्ध हैं और आप हमें सुन सकते हैं DTH के अलावा हमारे OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा का आज 34वां दिन है। यात्रा बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही सुचारू और सुगम ढंग से जारी है। हालांकि बीच में मौसम की खराबी के कारण यात्रा को कुछ दिनों के लिए स्थगित करना पड़ा, लेकिन जैसे ही मौसम में बदलाव आया, मौसम में तब्दीली आई, यात्रा को फिर से जारी कर दिया गया। मौसम में खराबी होने की वजह से यात्रियों के उत्साह में कुछ हद तक कमी देखने को मिली, लेकिन जो भी यात्री आता है बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ आता है, बहुत ही उम्मीदें लेकर आता है, अपने दिल में वो दुआएं लेकर आता है जो बाबा भोले के समक्ष वो रखने की कोशिश करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, वहाँ पे जाकर दुआएं करते हैं अपने लिए और पूरी इस दुनिया में रहने वाले, जगत में रहने वाले लोग।

लोगों के लिए, और हमारी यही दुआ रहती है कि उनकी सभी दुआएं कबूल हों और जो भी वो प्रार्थनाएं करते हैं, पूजा करते हैं, जो भी उनकी मनोकामनाएं होती हैं वो पूरी हों। आज जैसा कि आपको मालूम है कि श्रावण का महीना चल रहा है और इस श्रावण मास की हिंदू धर्म में एक निहायत ही अहमियत है और इसे एक पवित्र और महत्वपूर्ण महीना माना जाता है। इस महीने का बराह रास्त रिश्ता भगवान शिव से है, इसलिए शिव भक्त इस महीने में पूजा अर्चना करते हैं और बहुत सारी जो रस्में हैं वो निभाई जाती हैं। बहुत सी सारी रस्मों के बारे में हमने कल के ट्रांसमिशन में भी बात की। मान्यता है कि श्रावण के दौरान भक्त दिल से भगवान शिव की पूजा, जल अभिषेक, दूध, बेलपत्र, धतूरा और भांग अर्पित करते हैं भगवान को। इस महीने में कई लोग सोमवार व्रत रखते हैं और मंदिर जाकर शिव जी की आराधना करते हैं ताकि जीवन में सुख शांति समृद्धि और अच्छी सेहत का आशीर्वाद हासिल हो, और यही हर एक मनुष्य का जो है उद्देश्य होता है कि उसके जीवन में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो और उसे अच्छी सेहत प्राप्त हो, क्योंकि एक सेहतमंद इंसान ही हर एक काम को अच्छे ढंग से करता है, अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यापन कर सकता है। और इस संसार में जो भगवान ने हमें या हमारे ऊपर वाले ने हमें सुविधाएं दी हैं, हमें सुख दिए हैं, उनका आनंद एक सेहतमंद इंसान ही ले सकता है। चलिए, बातें तो बहुत सारी होती रहेंगी और हो रही हैं, लेकिन फ़िलहाल पहले सत्र में जैसा कि आपको मालूम है कि हम घाटी में उपस्थित हमारे विभिन्न संवाददाताओं से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं जो आज का दिन है उसके हवाले से जो प्रशासन है उन्होंने क्या कुछ इंतज़ाम किए हैं और किस तरह का वातावरण है, माहौल है जो हमारे मुख्तलिफ बेस कैंप्स हैं, जम्मू का भगवती नगर बेस कैंप हो या हमारे पहलगाम नुनवन का बेस कैंप हो या हमारा बालतल का बेस कैंप हो, वहाँ पर क्या कुछ घटनाक्रम हो रहा है, क्या कुछ माहौल बना हुआ है, इस हवाले से हम अपने संवाददाताओं से बात करते हैं इस ट्रांसमिशन में। और इसके लिए आपको कुछ समय का इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि टेलीफोन लाइन पर हम अभी अपने संवाददाताओं से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे राबिता करने की कोशिश कर रहे हैं। फ़िलहाल आप हमारा ये विशेष प्रसारण सुनते रहिए, हम जल्द हाजिर होते हैं और आपको अवगत कराते हैं जो ताज़ातरीन घटनाक्रम है उसके हवाले से।

0: श्री अमरनाथ यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण जारी है और इस पहले सत्र में जैसा कि आपको मालूम है कि हम अपनी घाटी में मौजूद विभिन्न संवाददाताओं से बात करते हैं, उनसे ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स और ताज़ा तरीन जो खबरें यात्रा से संबंधित होती हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। और इसी सिलसिले के अंतर्गत हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं हमारे जम्मू के संवाददाता जावेद मेहराब। जी जावेद, खैर मकदम है आपका इस आज के विशेष प्रसारण में।
1: जी शुक्रिया आपका। जैसा कि यात्रा के प्रति जो यहाँ क्या अपडेट्स होते हैं, कोशिश करते हैं अपने हम श्रोताओं से बात करने की और उन्हें यात्रा के बारे में जो अपडेट्स हैं और जिस तरह से यात्रा सुखद और बेहतर तरीके से यहाँ से रोजाना रवाना होती रही है और लाखों श्रद्धालुओं ने अभी तक जो दर्शन किए हैं उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है। प्रबंधन बराबर उसी तरह के हैं और जम्मू में मौसम आज एकदम साफ है और इस दौरान यहाँ के सिर्फ पहाड़ी इलाकों में, जैसा कि हमेशा से इस सावन के महीने में ऐसा होता है कि बारिश जो है वो पहाड़ी इलाकों में अक्सर बेशतर होती रहती है, जिसकी वजह से कई बाधाएं राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी होती रहती है। इस दौरान भी जो राष्ट्रीय राजमार्ग है जो उधमपुर और रियासी का इलाका है, वहाँ कई बार रात के समय बारिश होने की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के जो वाकयात देखने को मिले हैं वो लगातार कई दिनों से जारी भी है। और इस दौरान यहाँ खासतौर पर उधमपुर के देवल इलाके में जिस तरह से भूस्खलन की वजह से सड़क का एक पूरा हिस्सा निकल गया था और उसमें मैन और मशीनरी जो है, कर्मचारी जो है, राष्ट्रीय राजमार्ग की जो टीमें हैं और खासतौर पर जो मशीनरी लगाई गई थी जिससे बाधाएं जल्द से जल्द पूरी तरह से ठीक करने की कोशिशें जारी है। कल भी रात के समय बारिश की वजह से बारिशों ने एक बार फिर वो बाधाएं पैदा की, जिसकी वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो ट्रैफिक है वो स्थगित रहा और स्थानीय ट्रैफिक के स्थगित रहने की वजह से जो है वो पूरी तरह से राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक की आवाजाही मुअत्तल रही। और हालांकि यहाँ जो कर्मचारी, जैसा मैंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर मशीनों से जल्द बाधाओं को ठीक करने की कोशिशें रात दिन जारी है और ताकि न सिर्फ स्थानीय आवाजाही भी बनी रहे बल्कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर रोजाना यहाँ भगवती नगर निवास स्थान से बाबा बर्फानी के श्रद्धालु यहाँ से रवाना होते हैं उनके लिए किसी तरह की परेशानी न हो। और हमेशा से वो सारे स्टेप लिए गए हैं जिसकी वजह से श्रद्धालुओं की जो आवाजाही है उसको बेहतर बनाने के लिए और उसको पूरी तरह से सुखद तरीके से उन्हें घाटी तक पहुंचाने के लिए सुरक्षा घेरे को बेहतर बनाया गया है। और खासतौर पर इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर तब तक किसी स्थानीय गाड़ी को भी चलने की इजाजत नहीं होती है जब बाबा बर्फानी के श्रद्धालु घाटी की ओर रवाना होते हैं, लेकिन कई बार राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो है भूस्खलन के वाकयात सामने आए हैं जिसकी वजह से यात्रा जो है वो कई बार उसको रोक दिया गया है। आज भी ऐसा ही हुआ है, यात्रा रुकी जरूर है, थमी जरूर है, लेकिन ये सिलसिला जो यहाँ से लगातार पिछले एक महीने से ज्यादा अरसे से जारी है जम्मू के इस निवास स्थान भगवती नगर से, वो उसी तरह से बराबर जारी है। और यहाँ से कल भी श्रद्धालु लगातार अपने सफर की तरफ रवाना होते रहे, लेकिन आज यात्रा को फिलहाल जो राष्ट्रीय राजमार्ग की जो स्थिति है उसको देखते हुए फिलहाल रोक दिया गया है। लेकिन ये रोकना जो है ये मुकम्मल तौर पर रोक नहीं लगा दी गई है बल्कि यात्रा जो है वो बराबर जारी रहेगी और श्रद्धालुओं को भी यहाँ पूरी तरह से आश्वस्त किया गया है कि जैसे ही सड़क की हालत ठीक होगी और सड़क चलने के काबिल हो जाएगी यहाँ से जत्था जो है वो रवाना होने के लिए तैयार है। और इसी तरह से लगातार ये जत्थे जो है, जैसे ही एक जत्था यहाँ से निकलता है और

0: पार्टी की ओर रवाना होता है, वैसे ही दूसरे जत्थे की तैयारियां जो है वो यहाँ भगवती नगर निवास स्थान में शुरू हो जाती है, क्योंकि प्रक्रियाएं जो है वो उसी तरह से है। संख्या जरूर कम हुई है श्रद्धालुओं की, क्योंकि पूरे देश भर से जो श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं। अब मौसम जो कि सावन का है, उसमें कई बार खेती बाड़ी है, स्कूलों की छुट्टियां हैं और बहुत सी चीजें हैं देश भर में, उसकी वजह से संख्या कम जरूर हुई है, लेकिन श्रद्धालु जो है बराबर उसी आस्था और उसी विश्वास के साथ यहाँ पहुंच रहे हैं, और श्रद्धालुओं के लिए बनाए गए क्रम को उसी जोश खरोश के साथ रवाना भी किया जाता है, और स्थान भगवती नगर में उसी उत्साह के साथ श्रद्धालुओं को तमाम तरह की सुविधाएं भी मिल रही है, और यहाँ तमाम तरह के प्रबंधन उसी क्रम में भी रखे गए हैं ताकि श्रद्धालु उसी अनुशासन के साथ जिस तरह से पहले दिन से यात्रा के शुरू होने के साथ ही यहाँ अनुशासन के साथ जो प्रबंधन रखे गए थे उन प्रबंधनों को बिल्कुल उसी तरह से रखा गया है। यहाँ अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा एजेंसियों के घेरे जो है लगातार उसी क्रम के साथ चल रहे हैं, श्रद्धालुओं को तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो यहाँ मिल रही हैं, और उसके अलावा यहाँ इस पूरे जो सफर है घाटी का बाबा बर्फानी के द्वार तक का, उसकी ट्रेनिंग, उसके लिए योगा, उसके लिए चिकित्सा के जो इंतजाम है वो सारे पूरी तरह से उसी क्रम में रखे गए हैं जिस अनुशासन के साथ ये यात्रा पिछले एक महीने के ज्यादा अरसे से रवाना होती रही है, और लाखों श्रद्धालुओं ने रिकॉर्ड तोड़ दर्शन भी किए हैं, और दर्शन कर वापस लौट कर यहाँ न सिर्फ प्रशासन अधिकारियों कर्मचारियों और उसके अलावा जो श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के जो तमाम तरह की जो इंतजाम थे उनकी सराहना भी की है, और उस सराहना के साथ वो यहाँ से हंसी खुशी अपनी के अपने साथ प्यार मोहब्बत और मेहमान नवाजी की यादों के अलावा यहाँ के जो सौगात है जिस तरह से सेब है, सूखे मेवे है और खरीदारी की जो हमारी आर्ट क्राफ्ट की चीजें हैं वो यहाँ से सौगात के तौर पर ले भी गए हैं, और खासतौर पर जम्मू की अगर बात करूँ तो यहाँ के बाजारों में इस पूरे दो महीनों के अंदर लगभग मेले जैसा माहौल है। उसके अलावा जो यहाँ के खास तौर पर जो यहाँ का पर्यटन है वो धार्मिक पर्यटन के तौर पर जम्मू को जाना और माना जाता है देश भर में, यहाँ के धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं ने पूरी तरह से अपनी हाजिरी भी दी है, और यहाँ यहाँ के कारोबार, यहाँ के बाजारों, यहाँ के निवास जो निवास स्थानीय है उन्होंने भी पूरी तरह से इस यात्रा के साथ मिलकर यात्रा को कामयाब अभी तक बनाया हुआ है। आज यात्रा एक दिन के लिए स्थगित जरूर हुई है, लेकिन कल के लिए जो तैयारियां हैं वो लगातार यहां से जारी है, और हमें उम्मीद है कि यात्रा उसी जोश खरोश के साथ यहां से रवाना होती रहेगी।
1: जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जो रास्ता ख़राब है जैसा कि आपने बताया और वो जल्दी से ठीक हो जाए, और यात्रियों को आने का जो सिलसिला है वो फिर से शुरू हो जाए और हमें उनकी सेवा करने का मौका मिले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जावेद इस तफसीली रिपोर्ट के लिए।
0: बहुत शुक्रिया।
1: ये थे हमारे जम्मू के संवाददाता जावेद मेहराब, जो बता रहे थे कि आज जम्मू से किसी भी यात्री गाड़ी को घाटी की जानिब आने की इजाज़त नहीं होगी क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम कई दिनों से बारिशें देख रहे हैं जिसकी वजह से भूस्खलन होता है, सड़कें ख़राब होती हैं जिसकी वजह से फिर चलना फिरना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, कुछ एक बार प्रशासन ने ये रिस्क लिया था कि हम जो यात्रियों का जत्था आता है, काफिला आता है, उसको जाने की इजाज़त दें, मगर यात्रियों की सुरक्षा सबसे प्राथमिकता दी जाती है, उनको उनकी सुरक्षा को सबसे ज़्यादा मद्देनज़र रखा जाता है, और इसीलिए आज जब तक रास्ता सही नहीं होता है किसी भी गाड़ी को, यात्री गाड़ी को जम्मू से श्रीनगर आने की इजाज़त नहीं होगी, ना ही श्रीनगर से जम्मू किसी यात्री गाड़ी को जाने की इजाज़त होगी। और जैसा कि इन्होंने बताया कि जम्मू में इस वक्त वातावरण बहुत ही अनुकूल है, बहुत ही खुशगवार है, मौसम भी ठीक है, और यात्री इस दौरान ख़रीदारी कर रहे हैं, बहुत सारे मजहबी स्थलों का वो विज़िट कर रहे हैं, उनका ख़रीदारी कर रहे हैं, कुल मिलाकर माहौल साजगार है, और इस माहौल में हमें चाहिए कि एक दूसरे का साथ दें, पैनिक ना करें और प्रशासन के द्वारा जो उठाए गए स्टेप्स हैं, उनके जो सलाह हैं, उन पर अमल करने की कोशिश करें। फिलहाल ये विशेष प्रसारण जारी है।

अभी हम जो हाईवे का हाल है, राष्ट्रीय राजमार्ग का, वो जानने की कोशिश करेंगे। हमारे जो बानीहाल के संवाददाता है मोहम्मद तस्कीन, उनके साथ बात करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल आप ये भक्ति से सराबोर सुक्तम सुनिए, गणपति सुक्तम, और उसके बाद हम फिर से बात करेंगे।

0: जी श्रोताओं, हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे बानिहाल के संवाददाता मोहम्मद तस्कीन, जो हमें हाईवे का हाल बताएंगे और जो मौसम का मिजाज इस वक्त इस इलाके में, उस हवाले से हम इनसे रिपोर्ट लेते हैं हर रोज़। जी तस्कीन साहब, आपका खैर मकदम है आज के इस विशेष प्रसारण में।
1: जी शुक्रिया।
0: बताइए, क्या है हाईवे का हाल? जैसा कि हमने सुबह से सुना कि हाईवे पर काम चल रहा था, लेकिन अब कुछ देर पहले हम तक ये खबर पहुंची कि हाईवे फिलहाल ठीक हो चुका है और गाड़ियों के आने जाने का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है, लेकिन यात्रा फिलहाल बंद है।
1: जी बिल्कुल सही सुना है आपने कि श्री अमरनाथ यात्रा को आज सस्पेंड रखा गया है जम्मू श्रीनगर हाईवे पर। ना आज कश्मीर से कोई, ना आज जम्मू से कोई अमरनाथ यात्रा का कोई काफिला रवाना किया जाएगा भगवती नगर बेस कैंप से कश्मीर की तरफ, और ना ही कश्मीर के बालतल से किसी भी यात्रा गाड़ी को जम्मू की तरफ आने की इजाजत दी जाएगी। इस दौरान जो हाईवे पर जो कल रात से कल भी बारिशें हुई थी, उधमपुर के सेक्टर में बहुत खूब बारिशें हुई थी, उस वजह से जो मुख्तलिफ मकामात पर जो हाईवे की हालत खराब है, और इस वजह से जो हुकाम ने पहले ही फैसला ले रखा है और आज सुबह इसका ऐलान भी बाजाबता कर दिया, PCR जो कंट्रोल रूम है पुलिस का, उनके मुताबिक कि आज जो श्री अमरनाथ यात्रा दोनों मार्गों से, मतलब जम्मू से कश्मीर की तरफ बंद रहेगी और कश्मीर से भी जम्मू की तरफ किसी भी यात्रा गाड़ी को आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अलबत्ता इस दौरान जो दर्शन के लिए जो ऑलरेडी बालतल में मौजूद हैं जो श्री अमरनाथ यात्री जो ऑलरेडी वहां पहुंचे हुए हैं, तो उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत दी जाएगी पवित्र गुफा की तरफ और वो दर्शन करेंगे। इस दौरान जम्मू श्रीनगर हाईवे पर ट्रैफिक को बहाल किया गया है और फिलहाल जो यात्रा न होने की वजह से जो रूटीन का ट्रैफिक है, जो मामूल का ट्रैफिक है, उसे अलाउ किया गया है। जम्मू से ट्रैफिक चल रहा है, कश्मीर की तरफ आ रहा है, और इसी तरह कश्मीर से भी ट्रैफिक को अलाउ किया गया है जम्मू की तरफ। फिलहाल दोनों तरफ का ट्रैफिक चल रहा है और बगैर किसी बाधा के चल रहा है, और मौसम जो है अब्र आलूद भी है और हल्की हल्की धूप भी निकली हुई आज सुबह ही, और मौसम मजमू तौर पर खुशगवार बना हुआ है।
0: और मौसम विभाग की क्या जानकारी है अगले 24 घंटों में या अगले आने वाले दिनों में, क्या कैसा मौसम रहने वाला है?
1: महकमे मौसमियात ने जैसे मुख्तलिफ रिपोर्ट्स इसमें आ रही हैं, जैसे जो महकमे मौसमियात के हुक्काम हैं उनके मुताबिक 5 तारीख से 8 तारीख तक जम्मू डिवीजन में बारिशों के इम्कान का जाहिर किया गया है। मतलब अच्छी खासी बारिशें होने का इम्कान है, जिसमें जो मेट डिपार्टमेंट में है उनके डायरेक्टर साहब का भी कल कहना है कि मेजर जो एक्टिविटी 8, 7, 8, 9 तारीख को भी रहने का इम्कान है। जम्मू डिवीजन के मैदानी इलाकों में खासकर जो NH-44 के इलाकों में आता है, चनाब वैली आता है, पीर पंजाल आता है, इन इलाकों में अच्छी खासी बारिशों की पेशेंगोई कर रखी गई है। तो फिलहाल आज अभी मौसम ठीक है, लेकिन बादल हैं, लेकिन बारिशों का इम्कान साथ साथ जाहिर किया गया है। मतलब हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों का इम्कान है, जिससे हाईवे पर इफेक्ट पड़ने का भी इम्कान जाहिर किया गया है।
0: जी जी बहुत शुक्रिया आपका इस तफसीली रिपोर्ट के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि

0: जो यात्रा आज दिन के लिए सस्पेंड की गई है उसे जल्द से बहाल कराया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों को बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए आने का मौका मिले। आपका बहुत शुक्रिया तस्कीन साहब इस तफसीली रिपोर्ट के लिए।
1: शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
0: ये थे हमारे बानिहाल के संवाददाता मोहम्मद तस्कीन जो हमें हाईवे का अपडेट दे रहे थे और मौसम के हवाले से इन्होंने बात की कि मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है बारिशें होने का फिर से इस इलाके में जो बानिहाल रामबन या जम्मू का पूरा इलाका है इसमें आज से लेके 9 तारीख तक। मगर हम उम्मीद यही करते हैं कि मौसम में बेहतरी हो, बारिशें ना हो और जो रास्ता कई रोज़ से बंद था नेशनल हाईवे भूस्खलन और बहुत सारी पस्सियाँ जो कई जगहों पे गिराती हैं उनकी वजह से ऐसा ना देखने को मिले और जो लोकल ट्रैफिक है या अमरनाथ यात्री हैं उनके आने जाने में किसी किस्म का कोई बाधा पैदा ना हो। और ये ट्रांसमिशन अभी जारी है, आप हमारे साथ बने रहिए और ये विशेष प्रसारण सुनते रहिए।

जी श्रोता, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, न्यूज़ ऑन एआईआर की आराधना चैनल पर हम आप तक पहुंच रहे हैं और डीटीएच पर आप हमें सुन रहे हैं। इसके अलावा हाँ, हमारा ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी आप हमें सुन रहे हैं, जिसे आप अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का आज 34वां दिन है और आज यात्रा जो है सस्पेंड की गई है। हालांकि दर्शन अभी जो चल रहा है, जो बालतल मार्ग से फ़िलहाल यात्री बालतल बेस कैंप में मौजूद हैं, उन्हें पवित्र गुफा की जानिब इजाज़त दी गई है जाने की। लेकिन जम्मू से किसी भी यात्री गाड़ी को श्रीनगर की तरफ या श्रीनगर से किसी भी गाड़ी को जम्मू की जानिब जाने की इजाज़त नहीं है।

श्रोताओं, इस वक्त सुबह के 8 बज रहे हैं। आइए आकाशवाणी दिल्ली चलते हैं, जहां से हम हिंदी, अंग्रेज़ी और उर्दू में समाचार सुनेंगे।

0: बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। के समाचार। लाल सागर में यमन तट के पास हमले के बाद भारतीय ध्वज वाला जहाज डूबा, सभी 13 भारतीय नाविक सुरक्षित, भारत ने हमले की कड़ी निंदा की। भारतीय रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए। नीट यूजीसी काउंसलिंग के पहले चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु को नवी वरीयता मिली। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को 5वीं वरीयता। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय ध्वज वाला वाणिज्यिक पोत एमएसवी फैज नूरे औलैया कल यमन तट के पास हमले के बाद लाल सागर में डूब गया। पोत पर सवार सभी 14 नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 13 भारतीय थे।
3: भारतीय ध्वज वाला यह वाणिज्यिक पोत सऊदी अरब से तेल लेकर आ रहा था। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया, यमन के जल क्षेत्र के पास मिसाइल हमले के बाद पोत लाल सागर में डूब गया। श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत इस अकारण हमले की कड़ी निंदा करता है और हमारे लोगों की सुरक्षा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले की लगातार घटनाएं चिंताजनक है। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाया जाना बंद होना चाहिए और क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से निर्बाध नौवहन और व्यापार शीघ्र बहाल किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने बताया कि रियाद में भारतीय दूतावास स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
2: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताया है और कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सैनिकों की हिंसा ही वहां की वास्तविकता है।
4: इस वर्ष जून से अब तक वहाँ जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
2: श्री जायसवाल ने यह भी बताया

0: कि अगले महीने 12 और 13 तारीख को भारत की मेजबानी में दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए बिम्स्टेक के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को आमंत्रित किया गया है। भारत इस साल ब्रिक्स संगठन के अध्यक्ष के रूप में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह बैठक आज और कल भोपाल में आयोजित होगी।
1: भोपाल में आज से ब्रिक्स देशों की बड़ी सांस्कृतिक बैठक शुरू हो रही है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ये आयोजन 8 अगस्त तक चलेगा। इसमें ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह और संस्कृति मंत्रियों की बैठकें होंगी। इसके चलते भोपाल को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तरह सजाया गया है। इस आयोजन से सांस्कृतिक संवाद बढ़ेगा और सदस्य देशों के बीच सहयोग मजबूत होगा। पहले 2 दिन अधिकारी स्तर पर चर्चा होगी, जबकि आखिरी 2 दिन मंत्री पर घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जाएगा। भारत ने इस बैठक में 2 अहम प्रस्ताव रखे हैं। पहला, कलाकारों और सांस्कृतिक धरोहर की जानकारी के लिए साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना और दूसरा, यूनेस्को में सदस्य देशों के साथ मिलकर साझा नामांकन भेजने की पहल करना। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक आज से उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगी। ये बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। इसी दौरान संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी बैठक भी चलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इन बैठकों में शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सदस्य देशों के प्रतिनिधि विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा घोषणा करेगा। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे नवीनतम रेपो रेट की घोषणा करेंगे। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक सोमवार को शुरू हुई थी। नीतिगत निर्णय मौजूदा भू राजनैतिक तनाव और अमरीकी फेडरल रिजर्व पर दबाव के महत्वपूर्ण दौर में आ रहा है। यह आशा है कि आरबीआई प्रमुख रेपो रेट में कोई बदलाव न करते हुए इसे 5.25% पर ही रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और जारी करने को कहा है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों से शिकायत निपटान प्रणाली मजबूत करने, धोखाधड़ी की गई धनराशि वापस लाने तथा डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने की प्रक्रिया में सुधार करने को कहा है। झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें अपराध जांच विभाग सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है।
2: झारखंड की राजधानी रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम इस समय युवाओं के आक्रोश और आंसुओं का गवाह बना हुआ है। जेपीएससी परीक्षा में कथित धांधली के खिलाफ छात्र सड़कों पर हैं, लेकिन विडंबना देखिए, व्यवस्था का रुख इतना कड़ा है कि कड़ाके की धूप और खुले आसमान के नीचे बैठे इन प्रदर्शनकारियों को पीने का पानी, खाना और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नसीब नहीं हो पा रही है। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने इस मुद्दे पर विपक्ष के मौन रहने पर तीखा हमला बोला है। आंदोलन पर बुनियादी संकट गहराने के बाद गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने भी हेमंत सोरेन सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महवेश रहमान।
1: मेडिकल परामर्श समिति नीट यूजी काउंसलिंग 2000

0: 26 के पहले चरण का पंजीकरण आज से शुरू करेगी। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण का पंजीकरण और शुल्क भुगतान आज से 12 अगस्त दोपहर 3 बजे तक होगा, हालांकि शुल्क भुगतान 12 अगस्त शाम 6 बजे तक किया जा सकता है। एक रिपोर्ट।
1: अभ्यर्थी कल से 13 अगस्त तक अपनी पसंद दे सकते हैं। अपना चयन बताने की सुविधा 13 अगस्त सवेरे 11 बजे बंद हो जाएगी। पहले चरण की सीट आवंटन प्रक्रिया 13 अगस्त से 16 अगस्त तक चलेगी और परिणाम 17 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। जिन उम्मीदवारों को सीटें आवंटित की गई हैं, उन्हें 18 अगस्त से 22 अगस्त के बीच अपने संबंधित संस्थानों में रिपोर्ट करना होगा। संस्थान 23 अगस्त को उम्मीदवारों के डेटा का सत्यापन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उम्मीदवारों को MCC पोर्टल पर पंजीकरण, चयन भरने और सीट आवंटन प्रक्रिया समझने में सहायता करने के लिए वीडियो जारी किए हैं। इन वीडियो का उद्देश्य काउंसलिंग प्रक्रिया को सरल और विद्यार्थी अनुकूल तरीके से समझाकर उम्मीदवारों को मार्गदर्शन देना है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा देगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके लिए बजट में समुचित प्रावधान किए गए हैं।
2: वित्तीय वर्ष 2026-27 के पहले अनुपूरक बजट में इस विशेष पहल को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में वरिष्ठ नागरिक महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा का वायदा किया था। इस निर्णय से राज्य भर में लाखों वरिष्ठ महिलाओं को आर्थिक राहत मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने महिला कल्याण विभाग को 1094 करोड़ रुपए अतिरिक्त आवंटित किए हैं, जिससे निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों को मजबूती मिलेगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड और मध्य प्रदेश में कल तक तेज बारिश हो सकती है। केरलम में आज भी तेज वर्षा जारी रहेगी, हालांकि कल की तुलना में आज बारिश में कुछ कमी का अनुमान है। असम में लगातार तेज बारिश जारी है और इससे राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने असम के लगभग सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है और अगले 24 घंटों में पूरे राज्य में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पीवी सिंधु को BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में नवी वरीयता दी गई है। ये चैंपियनशिप 17-23 अगस्त तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। चैंपियनशिप में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को पुरुष डबल्स में 5वीं वरीयता मिली है। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स में 14वीं और ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रिस्टो मिक्स डबल्स में 15वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं। चैंपियनशिप की पांचों स्पर्धाओं में भारत के 2-2 खिलाड़ी भाग लेंगे। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 आज से अमरीका में शुरू हो रही है। इसमें 36 सदस्यों वाली भारतीय टीम हिस्सा लेगी। राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी 16 अगस्त से आम जनता के लिए खोल दी जाएगी। अमृत उद्यान का 15 सितंबर तक भ्रमण किया जा सकता है। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर साइबर ठगी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश और एयर इंडिया की फ्लाइट 2379 के अचानक हवा के दबाव में फंसने से यात्रियों की हुई कठिनाई के समाचार सबसे ऊपर छाए हुए हैं। जनसत्ता का शीर्ष समाचार है, साइबर ठगी वाले खातों से निपटने के लिए 4 हफ्ते में बने मानक संचालन प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट। दैनिक जागरण ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, 4 सप्ताह के भीतर म्यूल खातों से निपटने को SOP बनाए RBI। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, हाथों पर नियम बनेंगे। पंजाब केसरी ने एयर इंडिया विमान की उड़ान संख्या 2379 के समाचार को सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। शीर्षक दिया है, एयर इंडिया विमान टर्बुलेंस में फंसा, पत्र ने इस घटना में घायल यात्रियों की तस्वीरें भी प्रमुखता से छापी हैं। दैनिक भास्कर ने इस खबर को शीर्षक दिया है, थाईलैंड

0: West Bengal Padma Shri Dr. D.Y. Patil at the age of 90. And finally, Gen Z may help drive digital gold rush, states the Economic Times, as the savvy Gen Z emerges as the fastest growing consumer. With that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Subhadra. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India flagship sinks after attack in Red Sea. All 13 Indian sailors rescued. India condemns attack on commercial vessel. Reserve Bank of India to announce its bi-monthly monetary policy review this morning. Supreme Court asks RBI to prepare SOP for dealing with mule accounts and bank accounts linked to cyber fraud. Online registration for first round of NEET UG Counseling 2026 to commence today. IMD warns of very heavy rainfall in Assam and Meghalaya today. And in badminton, PV Sindhu seeded 9th, while Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty get 5th seeding for BWF World Championships. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। भारत का परचम बरदार जहाज बोहेरा एवर में हमले के बाद गर्क हो गया है। 13 भारतीय जहाजियों को बचा लिया गया है। भारत ने हमले की मजम्मत की है। भारतीय रिजर्व बैंक आज सुबह अपनी 2 माही पॉलिसी के जायजे का ऐलान करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई से कहा है कि वो फर्जी और साइबर घोटाले वाले खातों से निमटने के लिए कामकाज के मयारी तौर तरीके तैयार करे। 2026 की नीट यूजी काउंसलिंग के पहले मरहले के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अमल आज से शुरू हो रहा है। भारत के महकमे मौसमियात ने आसाम और मेघालय में आज बहुत शदीद बारिश से आगाह किया है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने बीडब्ल्यूएफ आलमी चैंपियनशिप के लिए नवा मकाम, जबकि सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने 5वां मकाम हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। यमन के साहिल के नजदीक बोहरे अहमर में कल भारत का परचम बरदार तिजारती जहाज एमसीवी फैजे नूरे ओलिया हमले के बाद डूब गया है। जहाज पर सवार सभी 14 जहाजरां, जिनमें 13 भारतीय शहरी थे, उन सभी को बचा लिया गया है। तफसील हमारे नामे निगार से।
3: रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय परचम बरदार टैंकर सऊदी अरब से तेल लेकर आ रहा था। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सरबानंद सोनोवाल ने कहा कि इस जहाज को यमन के पानी में हमले का निशाना बनाया गया, जिसके बाद ये डूब गया। जनाब सोनोवाल ने कहा कि भारत दीफा से कासिर तिजारती जहाज पर इस इश्तियाल अंगेज हमले की सख्त मजम्मत करता है। उन्होंने कहा कि भारतीय लोगों की सलामती सबसे अहम तरजीह है। इस दौरान वजारत खारजा ने इस हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि खित्ते में तिजारती जहाज रानी पर हमलों के वाकयात का जारी रहना इंतहाई तशवीशनाक है। वजारत खारजा ने मजीद कहा कि खित्ते में तिजारती जहाज रानी को हमले का निशाना बनाना खत्म होना चाहिए और खित्ते की बैन अलावामी आबी गुजरगाहों में जल्द से जल्द आज़ाद और बिला रुकावट जहाज रानी और तिजारत को बहाल किया जाना चाहिए। वजारत ने कहा कि रियाज में वाक़ भारतीय सफारतखाना सूरत हाल पर गहरी निगाह रखे हुए है और अमले के अफराद की हिफाजत और सलामती के लिए यमन के हुकाम के साथ सरगर्म तरीके से तालमेल कायम कर रहा है। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
2: भारत ने पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर के नाम नहाद मकामी इंतखाबात को मुकम्मल तौर पर तमाशा करार दिया है और कहा है कि इस तरह की खोखली हरकतें सच्चाई को नहीं छुपा सकती। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने इशारा दिया कि असल मामला अवामी एहतजाज और पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से मुजाहिरीन का जालिमाना कत्ल है। उन्होंने कहा कि इस साल जून से जारी कार्रवाई में अब तक कम से कम 90 शहरी जान गंवा बैठे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने अवामी इख्तलाफ का जवाब गोलियों, ब्लैकआउट, जोर जबरदस्ती और धमकियों से दिया है और अब इस तरह की खोखली इंतखाबी मशकों के जरिए उन्हें जायज ठहराने का जवाब ढूंढ रही है। जनाब जायसवाल ने मजीद कहा कि पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और दुनिया को इंसानी हकूक पर पाकिस्तान की मुनाफिकाना लफाजी को भी सुनना चाहिए। सितंबर के महीने में नई दिल्ली में मुनद होने वाली ब्रिक्स चोटी कॉन्फ्रेंस के दावतनामे से मुतक पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश के वजीर अजम तारिक रहमान की जानिब से इस साल फरवरी के महीने में अहदा संभालने के बाद उन्हें भारत के दोतरफा दौरे की रस्मी दावत दी गई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज से ब्रिक्स की सकाफती

0: मीटिंग की मेज़बानी की जा रही है। बहुत से मुल्कों के मंदूबीन सकाफत से मुतालिक चार रोज़ा तबादले ख्याल के लिए यहाँ पहुँच गए हैं। हमारे नामा निगार की एक रिपोर्ट।
1: ये चार रोज़ा मीटिंग भारत की ब्रिक्स सदारत के तहत मुनक़िद की जा रही है जो 8 अगस्त तक जारी रहेगी। इसमें ब्रिक्स के सकाफती वर्किंग ग्रुप और ब्रिक्स के वज़राए सकाफत की मीटिंग से शामिल हैं। इस तकरीब के लिए शहर की खास तौर पर तज़ईन कारी की गई है। VIP रोड और भोज सेतु को ताज़ा रंगों और मुराल से सजाया गया है। इब्तदाई दो रोज़ के दौरान सीनियर अफसरान तबादले ख्याल करेंगे और बाद के दो दिन सकाफत के वज़ीरों की मीटिंग्स मुनक़िद होंगी। वज़रा एक मुश्तरक ऐलानिये को कतई शक्ल देंगे। भारत ने रुकन मुल्कों के सामने दो अहम तजावीज रखी हैं जिनमें से एक का ताल्लुक फनकारों और सकाफती वर्से के लिए एक मुश्तरक डिजिटल प्लेटफॉर्म तख्लीक देने से है और दूसरी तजवीज़ का ताल्लुक ब्रिक्स मुल्कों की तरफ से यूनेस्को की मुश्तरक नामजदगियों की हौसला अफजाई से है। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कलीम अहमद।
0: ब्रिक्स के वज़राए तालीम की 13वीं मीटिंग और ब्रिक्स के सीनियर अफसरान की 30वीं मीटिंग ओडिशा के शहर भुवनेश्वर में आज से इस महीने की 7 तारीख तक मुनक़िद की जाएगी। वजारत तालीम ने बताया कि इन मीटिंग्स में ब्रिक्स रुकन मुल्कों के वज़राए तालीम सीनियर अफसरान और मंदूबीन शिरकत करेंगे। मीटिंग के दौरान इश्तराक के मौजूदात पर बातचीत की जाएगी जिनमें बचपन के इब्तदाई दौर में देखभाल और तालीम नीज हुनरबंदी को मुस्तहकम बनाने तआवुन में इजाफा करने और इश्तराक पर मबनी तहकीक इख्तिरा नीज स्टार्टअप्स को फ़रोग देने जैसे तरजीही मैदान शामिल हैं। मरकजी वजीर तालीम प्रहलाद जोशी ब्रिक्स के वज़राए तालीम की इस 13वीं मीटिंग में शिरकत करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक RBI अपनी माली पॉलिसी के जायजे का ऐलान आज करेगा। इस माली पॉलिसी के जायजे का ऐलान हर दो महीने में एक बार किया जाता है। RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ताज़ा तरीन रेपो रेट के फैसले का ऐलान मुंबई में सुबह 10 बजे करेंगे। पॉलिसी से मुतालिक ये फैसला एक ऐसे वक्त किया जा रहा है जब जोग्राफियाई और सियासी कशीदगी का सिलसिला जारी है और अमरीका के वफाकी बैंक की पॉलिसी में जारहीत का रुझान पाया जाता है। उम्मीद है कि RBI अपनी रेपो रेट 5.25% में कोई तब्दीली न करे। इसका मतलब ये होगा कि माली पॉलिसी से मुतालिक 6 रुकनी कमेटी MPC अपना गैर जानबदाराना मौकफ बरकरार रखे। रेपो रेट भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से आयद सूद की वो फीस होती है जो वो कमर्शियल बैंकों को पैसा उधार देते हुए वसूल करता है। रिजर्व बैंक अपने तबसरे में इफरात जर से मुतालिक उन अंदेशों, खाम कीमतों और आलमी जोग्राफियाई और सियासी गैर यकीनी हालात का जिक्र करेगा जो भारतीय मईशत पर असरअंदाज हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक को हिदायत दी है कि वो फर्जी खातों और साइबर घोटालों वाले बैंक खातों से निपटने के लिए एक मयारी तरीक़ेकार तश्कील दे। अदालत ने रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों नीज कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों को भी हिदायतें जारी की हैं कि वो शिकायतों के इजाले को मुस्तकम बनाएं, घोटालों से बचाए गए रुपए पैसे की बहाली में तेज़ी लाएं और डिजिटल घोटालों के केस से निपटने के अमल को बेहतर बनाएं। मेडिकल काउंसिल कमेटी NCC आज नीट UG काउंसिलिंग के पहले राउंड का रजिस्ट्रेशन शुरू करेगी। शेड्यूल के मुताबिक पहले राउंड का रजिस्ट्रेशन और फीस की अदायगी इस महीने की 12 तारीख को सुपहर 3 बजे तक की जा सकेगी। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: उम्मीदवार 6 अगस्त से 13 अगस्त के दरमियान अपने मुतबादिल फराहम कर सकते हैं। उम्मीदवारों के लिए 12 और 13 अगस्त को चॉइस लॉकिंग सहूलत दस्तियाब रहेगी। इस दौरान 13 से 16 अगस्त के दरमियान पहले राउंड की सीटों का अलॉटमेंट होगा। नतायज का ऐलान 17 अगस्त को होगा। सीट अलॉट किए गए उम्मीदवारों को 18 से 22 अगस्त के दरमियान मुतालिका इदारों में रिपोर्ट करना होगा। इस अमल में हिस्सा लेने वाले इदारे रिपोर्ट किए गए उम्मीदवारों के डेटा की 23 अगस्त को तस्दीक करेंगे। काउंसलिंग के अमल की शुरुआत से पहले वजारत सेहत ने मरहलेवार ट्यूटोरियल वीडियोज़ जारी किए हैं ताकि उम्मीदवार MCC पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, मुतबादिल फराहम करना और सीट अलॉटमेंट के तरीक़ेकार को समझ सकें। रिशु की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन JPSC के इम्तिहान में मुबैना बदउनवानियों पर तलबा के मुजाहिरों में शिद्दत आ गई है। रांची में हजारों उम्मीदवार जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 12 दिन से गैर मुयना मुद्दत का एहतजाज कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: مظاہرین نے دعویٰ کیا کہ تیز دھوپ میں بھی مظاہرے کی جگہ پر رہنے کے باوجود انہیں پینے کے پانی، خوراک اور بیت الخلا جیسی بنیادی سہولتوں سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ دفاع کے

0: आज बुहेरे अहमर में हमले के बाद गर्क हो गया है। 13 भारतीय जहाजियों को बचा लिया गया है। भारत ने हमले की मजम्मत की है। भारतीय रिजर्व बैंक आज सुबह अपनी 2 माही पॉलिसी के जायजे का ऐलान करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने RBI से कहा है कि वो फर्जी और साइबर घोटाले वाले खातों से निपटने के लिए कामकाज के मयारी तौर तरीके तैयार करे। 2026 की नीट UG काउंसलिंग के पहले मरहले के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अमल आज से शुरू हो रहा है। भारत के महकमे मौसमियात ने आसाम और मेघालय में आज बहुत शदीद बारिश से आगाह किया है। और बैडमिंटन में PV सिंधु ने BWF आलमी चैंपियनशिप के लिए 9वां मकाम, जबकि सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने 5वां मकाम हासिल किया है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
1: आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी श्रीनगर का FM बालतल स्टेशन 103.7 MHz, 100.1 MHz FM पहलगाम, न्यूज़ ऑन AIR की आराधना चैनल DTH तथा OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर आप आराधना चैनल के माध्यम से श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण सुन रहे हैं। मैं हूं आपका उद्घोषक इकबाल कादिर और आज श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का 34वां दिन है। आज जैसे कि हमने खबरों में सुना कि आज यात्रा सस्पेंडेड है, यात्रा स्थगित है, क्योंकि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग, उस पर कई जगह फिसलन और पस्सियाँ गिराने की वजह से यात्रा को आज दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। हालांकि जो दर्शन करने का सिलसिला है, जो बालतल का बेस कैंप है, वहाँ से जो दर्शन करने के लिए यात्री जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। और फिलहाल हमारे पास जो ताज़ा तरीन दर्शन रिपोर्ट है वो अभी तक नहीं आया है, लेकिन 2000 से जायद यात्रियों को आज सुबह 6:45 पर पवित्र गुफा की जानिब रवाना किया गया है। और जैसे ही हमारे पास कोई अपडेट आता है इस हवाले से, हम आप तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल हमारा जो हमारे संवाददाताओं से बात करने का सिलसिला है वो जारी है, और हमारे जो श्रीनगर के संवाददाता हैं इमरान नायकू, हम उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे जो यात्रा के मुतालिक ताज़ा तरीन अपडेट उनके पास है वो जानने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल हम बात कर रहे थे जो श्रावण का महीना होता है, इसमें बहुत सारी मान्यताएं होती हैं, बहुत सारे जो रस्में होती हैं हिंदू धर्म में, वो कौन कौन सी रस्में हैं, क्या क्या रस्म मनाई जाती है। मान्यता है कि श्रावण के दौरान भक्त दिल से जो है भगवान शिव की पूजा, जल अभिषेक, दूध, बेलपत्र, धतूरा और बांग अर्पित करते हैं। इस महीने में कई लोग सोमवार व्रत रखते हैं और मंदिर जाकर शिव जी की आराधना करते हैं ताकि जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और अच्छी सेहत का आशीर्वाद हासिल हो। पौराणिक कथाओं के मुताबिक समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहलवश निकला तो भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए उसे अपने कंठ में धारण किया। कहा जाता है कि उनके कंठ की जलन को शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर जल अर्पण किया, और इसी परंपरा को आज भी श्रावण मास में जल अभिषेक के रूप में निभाया जाता है। और इससे हमें ये मान्यता मिलती है कि अगर हमें एक दूसरे की मदद करने के लिए किसी कष्ट का भी सामना करना पड़े, किसी परेशानी का भी सामना करना पड़े, मगर हमें एक दूसरे की मदद ज़रूर करनी चाहिए। हमें एक दूसरे की मदद करने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, और यही इंसानियत का दर्स है, इंसानियत का सबक है जो हम सबको सीखने की कोशिश करनी चाहिए और सबको अपनी ज़िंदगी में अपनाने की ज़रूरत है। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण जारी है, आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और हम आप तक ताज़ा तरीन अपडेट्स पहुँचाते रहेंगे।
2: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
3: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है, सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
2: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए

0: जी श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण। हम अपने जो संवाददाता हैं रहीम रिजवान, उनके साथ बात करने की कोशिश करेंगे, जो हमारे गांदरबल के संवाददाता हैं, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे जो ट्रांज़िट कैंप मनीगाम है वहाँ के हालात क्या कुछ हैं, और जो बालतल में इस वक्त वातावरण है उसके हवाले से उनके पास क्या जानकारी है। रिजवान साहब, खैर मकदम है आपका इस विशेष प्रसारण में।
1: धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी, आज यात्रा सस्पेंडेड है, लेकिन जो वहाँ के ट्रांज़िट कैंप्स हैं, ट्रांज़िट कैंप मनीगाम और बालतल का जो बेस कैंप है, वहाँ पर कैसा माहौल है और जो पूरा वातावरण है इस वक्त, उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए।
1: देखिए, हम बार बार अपने श्रोताओं तक ये जानकारी पहुंचाते हैं बालतल के पूरे क्षेत्र में कैसा वातावरण है, मौसम की स्थिति कैसी बनी है, या यात्रियों के गतिविधि के बारे में भी उन्हें जानकारी फराहम करते हैं बार बार कि बालतल बेस कैंप से पवित्र गुफा तक कैसा माहौल है, मौसम की स्थिति कैसी बनी है, या श्रीनगर कारगिल राजमार्ग पर जो हमारे दो ट्रांजिट कैंप्स हैं वहां पे कैसा वातावरण है
0: जी
1: और उनके लिए किस तरह की सुविधाएं।

0: उपलब्ध रखे गए हैं।
1: जी
0: तो आज अगर हम बाल दल की बात करेंगे पहले, क्योंकि वहीं से शुरुआत होते हैं सुबह 2 बजे, तो आज सुबह सवेरे से ही यहाँ मौसम बिल्कुल सुहाना है, धूप खिली हुई है। अलबत्ता यहाँ का वातावरण जो है, मौसम जो है वो बदलता रहता है, मिजाज का मौसम पल पल बदलता रहता है। कभी कभी वर्षा होती है, हल्की हल्की वर्षा, और इसी के साथ साथ धूप भी खिलती है, तो साथ ही ठंडी ठंडी हवा

0: श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हैं। और एक अहम बात हम अपने आप जो हमारे श्रोता है उनको ये पहुंचाना चाहते हैं यात्रा के हवाले से, क्योंकि उन्हें हम यहाँ के भाईचारे उख़वत वगैरह की मिसाल या मेहमान नवाजी की मिसाल देते रहते हैं कि यात्रा करने वाले एक धर्म के लोग हैं और करवाने वाले दूसरे धर्म के लोग हैं, ना कि दूसरे बल्कि अन्य जो धर्म है वहाँ के यहाँ मुख्तलिफ धर्म जो है उनके लोग यहाँ देखने को मिल रहे हैं जो अपनी सहायता अपनी जो खदमात है वो मयसर रखते हैं इस यात्रा के दौरान। हमने कुछ ताजरों से यहाँ बात की तो उन्होंने आकाशवाणी को बताया कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नारा दिया है वोकल फॉर लोकल, यानी जो भी यहाँ से चाहे पर्यटक हो चाहे श्रद्धालु हो कोई देशी या विदेशी यहाँ कश्मीर जम्मू कश्मीर में आए यहाँ पे तो उन्हें चाहिए कि जितना वो खर्चा करे उसमें से कम 10% वो यहाँ लोकल वेंडर्स पे खर्च करें, यहाँ का लोकल माल जो है तो उनसे वो खरीदे। इस तरह जो दस्तकार वहाँ शाल बनाने वाले बैठे थे, बहुत सारे कारीगर बैठे थे जिन्होंने अपनी चीजें वहाँ पे लिए, छोटी छोटी दुकानें कायम की हैं, उनको बाजाबता तो परमिशन मिला है, उनकी वेरिफिकेशन हुई है, तो उनसे हमने बात की है कि इस वर्ष उनकी बिक्री कैसे रही। तो उन्होंने बिल्कुल मुतमईन का इजहार किया कि हम चाहते हैं कि ये 57 रोज जारी जो श्री अमरनाथ जी यात्रा है ये 57 रोज तक बराबर 28 अगस्त यानी श्रावण पूर्णिमा के जो रक्षाबंधन के मौके पर इख्ताम पजीर होगी, तो वो चाहते हैं कि ये 57 रोज जारी रहे क्योंकि उन्होंने इस साल अच्छी बिक्री की है, अपने घर वालों के लिए अच्छे पैसे कमाए हैं
1: जी।
0: और इस दौरान प्रशासन ने भी उन्हें काफी सहयोग दिया है इस हवाले से कि आप अपना काम अच्छे तरीके से जा रहे हैं, वो बिल्कुल मुतमईन नजर आ रहे हैं। और इस साल अगर हम ये कह सकते हैं कि बागतल मुख्य मार्ग से जो तीर्थ यात्रा है वो खुश असलूबी से जारी रही और यहाँ के लोग चाहते हैं कि वो 57 रोज अच्छी तरीके से जारी रहेगी जी।
1: जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो आखिर में बताया कि जो अपना माल बेचने वाले हैं, जो आपने वोकल फॉर लोकल का नारा जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का है उसमें एक प्रमोशन देखने को मिल रहा है, और ये सुनकर भी खुशी हुई कि जो यात्रीगण हैं हमारे मेहमान हैं वो भी इन चीज़ों को खरीदने में एक रुचि दिखा रहे हैं, एक पॉजिटिव अप्रोच है उनका इन चीज़ों की तरफ। लेकिन जो बेचने वाले हैं उनसे हमारी यही गुजारिश रहेगी कि आप उनको चीज़ सही दीजिएगा, आप कोई उनको गलत चीज़ नहीं दीजिएगा, क्योंकि उस पर उससे आप ही के कारोबार पर इम्पैक्ट होगा, असर होगा, क्योंकि आगे खुदा न खास्ता एक गलत मैसेज जा सकता है। और जो आपने बात की इंतज़ामात की उससे भी हम बहुत खुश हैं और आगे भी ऐसे इंतज़ामात की हम उम्मीद रखते हैं, और आपसे आगे और भी बात होगी। और इस वक्त इस तफसीली रिपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: शुक्रिया आपका।
1: हमारे साथ हमारे गांदरबल के संवाददाता रहीम रिजवान बात कर रहे थे, इन्होंने एक तफसीली रिपोर्ट हम तक पहुंचाई मौसम के हवाले से, रास्ते के हवाले से, और जो मुख्तलिफ ट्रांज़िट कैंप्स में इंतज़ाम है उसके हवाले से, और आखिर पर जो इन्होंने दस्तकारी आइटम्स जो या स्टॉल्स पे बहुत सारी अशियाएँ बेचने वाले लोग हैं उनकी बात की, जिससे एक पॉजिटिव मैसेज अभी तक गया है और लाखों की तादाद में जो यात्री यहाँ से यात्रा करके अपने अपने घरों में पहुँच चुके होंगे उससे और भी लोगों का जो मन है वो करता होगा कि हम कब कश्मीर जाएं, कब हम बाबा बर्फानी के दर्शन करें, और साथ ही में कश्मीर का जो पूरा वातावरण है इसका एक जायज़ा लें, और यहाँ की जो दस्तकारी चीज़ें हैं हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स की चीज़ें हैं उनको ख़रीद कर अपने घर ले आएं। तो आगे हमारा अब हमारे श्रीनगर के संवाददाता इमरान नायकू से बात करना बाकी है, उसके बाद हम अनंतनाग के जो हमारे संवाददाता हैं अस्तारिक उनके साथ भी बात करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल हमारे पास हमने कुछ भजन क्यू करके रखे हैं, फ़िलहाल आप ये भक्ति संगीत सुनिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।

0: वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी श्रीनगर के एफएम बालतल, एफएम पहलगाम, हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स डीटीएच और न्यूज़ ऑन एआईआर की आराधना चैनल पर। हमारे संवाददाताओं से बात करने का हमारा सिलसिला जारी है और हमारा राबिता हो चुका है हमारे अनंतनाग के संवाददाता एस तारिक साहब से। तारिक साहब, खैर मकदम है आपका इस विशेष प्रसारण में?
1: बहुत शुक्रिया जुनेद साहब, इस विशेष प्रसारण के सभी श्रोताओं को मेरा शुभकामनाएं। 57 दिनों तक चलने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा के आज 33 दिन पूरे हो गए हैं। आज जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से पहलगाम और बालतल के लिए यात्रा निलंबित रहेगी। पहलगाम से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पवित्र गुफा तक यात्रा मार्ग पर आज आमतौर पर आकाश अब्रालूद की

0: संभावना है। भारतीय मौसमी विभाग के अनुमान के अनुसार दिन भर हल्की सी और मध्यम वर्षा, गरज चमक के साथ बूंदाबांदी और कुछ स्थानों पर तेज वर्षा के छोटे दौर देखने को मिल सकते हैं, जिनकी शिद्दत दोपहर और शाम के समय बढ़ सकती है। आज अधिकतम तापमान लगभग 13 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का अनुमान है, जबकि ऊंचे क्षेत्र में प्रातःकाल तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रह सकता है। वर्षा के इम्कान 25 से 40% तक है। पश्चिम और दक्षिणी पश्चिम दशा से 5 से 7 मील प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। यात्रा मार्ग पर अधिकतम 50 से 98% के बीच रहने का अनुमान है, जिसके बाद मौसम ठंडा और निम्न बना रहेगा। दोपहर के बाद संभावनावित वर्षा के बायस यात्रा मार्ग फिसलन भरा हो सकता है, इसलिए श्रद्धालुओं से अनुरोध कि वो वर्षा से बचाव का अभिषेक और सामान साथ रखें और ऊंचाई वाले क्षेत्र के ओर रवाना होने से पहले संबंधित प्रशासन और मौसमी विभाग की ताजा सलाह अमल करें। लगातार भारी वर्षा के कारण यात्रा मार्ग को हुए नुकसान की मरम्मत और आवश्यक रख रखाव के मद्देनजर श्री अमरनाथ यात्रा को पहलगाम मार्ग और इस आज के दिन बालतल के लिए भी जो है निलंबित रखी गई है। संबोधित विभाग यात्रा मार्ग की पुनर्बहाली और सुरक्षा से जुड़े सभी कार्यों में लगातार जुड़े हुए हैं। यात्रा को पुनर्आरंभ करने के निर्णय मौसम और मार्ग के पूरे स्थिति का आकलन करने के बाद ही लिया जाएगा।
1: जी,
0: तो इन 57 दिनों की यात्रा के आरंभ से अब तक 4,67,986 श्रद्धालु बाबा बर्फानी के पवित्र दर्शन कर चुके हैं, जबकि गुज़िश्ता दिन 3,289 श्रद्धालु ने पवित्र गुफा में दर्शन किए।
1: तो
0: लगातार भारी वर्षा और यात्रा मार्ग की मरम्मत के मद्देनजर जम्मू से घाटी के ओर जो आज की यात्रा है रोक दी गई है। इस कारण जम्मू से किसी भी नई यात्री को घाटी की ओर आज अनुमति नहीं दी गई। तहम बाबा बर्फानी के पवित्र दर्शन सुचारू और निर्वत रूप से जारी है। जो श्रद्धालु पहले ही यात्रा मार्ग पर मौजूद है या पवित्र गुफा के आसपास क्षेत्रों में ठहरे हुए हैं, इनकी दर्शन की व्यवस्था हसबे मामूल जारी है।
1: जी, सुनकर बहुत खुशी हुई कि व्यवस्थाओं में फिलहाल किसी किस्म की कमी नहीं है। और जो मौसम के हवाले से आपने बात की कि आज मौसम अबर आलूदा है और जो पहाड़ी इलाके हैं, ऊपरी इलाके हैं, गुफा के आसपास के इलाके, वहाँ पर ठंड ज़्यादा रहने का अनुमान जताया गया है। और हमारी यही विनती, यही आग्रह रहता है हमारे सुनने वालों से, हमारे यात्रियों से, कि इस क्षेत्र में मौसम बार बार बदलता रहता है, तो उन्हें अपनी जो गर्मी का इंतज़ाम है वो रखना चाहिए, एक रेनकोट अपने साथ रखना चाहिए, जैसा कि आपने भी बताया। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तफसीली रिपोर्ट के लिए, आपसे आगे भी बात होती रहेगी।
0: बहुत शुक्रिया।
1: हमारे साथ हमारे अनंतनाग के संवाददाता बात कर रहे थे एस तारिक, और इन्होंने जो पहलगाम का प्राचीन मार्ग है उसके हवाले से हमें जानकारी दी कि वहाँ पर कैसा वातावरण है। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि मौसम में तब्दीली आ सकती है, और हमारा भी यही आग्रह है तमाम सुनने वालों से, तमाम यात्रीगणों से, कि आप अपनी जो गर्मी का इंतज़ाम है वो ज़रूर रखिए, अपने बैग में गर्म कपड़े ज़रूर रखिएगा, क्योंकि इस इलाके में मौसम कभी भी बदल सकता है। इस इलाके में कभी भी बारिश हो सकती है, तेज़ हवाएँ, ठंडी हवाएँ चल सकती हैं, जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ हो सकती है। इसलिए अपने साथ टोपी, मफलर और ग्लव्स ज़रूर साथ रखिएगा, ऊनी मोज़े रखिएगा, रेनकोट ज़रूर रखिएगा, और एक लाठी अपने साथ ज़रूर रखिएगा, क्योंकि यह रास्ता फिसलन भरा हो जाता है और इस पर फिर चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और हम आगे भी बात करेंगे, आपसे आगे भी और वार्ता होगी। फ़िलहाल हमारा ये विशेष प्रसारण जारी है और इसमें आप बने रहिए।
2: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
3: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।

आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें।

श्रोताओं, अभी इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ की घड़ी में सुबह के 9:25 होने जा रहे हैं। अब हमारे यहाँ से आप उर्दू ख़बरनामा सुनेंगे, जिसके बाद हम ये भजन कंटिन्यू करेंगे और आप तक और भी जानकारी पहुँचाएंगे।

0: पहुंच चुके हैं। वो बादल के रास्ते यात्रा करके गुफा पर हाजिरी दे रहे हैं। इसी दौरान आज सुबह 9 बजे तक 446 यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी दी। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत 19.8 डिग्री जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हर 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।
1: आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आकाशवाणी श्रीनगर के FM बालतल, FM पहलगाम, न्यूज़ ऑन AIR की आराधना चैनल, DTH तथा हमारे OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर।

जी श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण, और हम तक आया है ताज़ा तरीन दर्शन रिपोर्ट सुबह के 9 बजे तक का। आज सुबह के 9 बजे तक बालतल मार्ग से जो

यात्री पवित्र गुफा की जानिब दर्शन के लिए गए हैं, उनकी वापसी का सिलसिला जारी हो चुका है और कुल मिलाकर अभी तक 446 यात्रियों ने पवित्र गुफा में जाकर शिवलिंगम के दर्शन किए, जिनमें 260 पुरुष, 133 महिलाएं, 9 बच्चे, 3 साधु, 1 साध्वी और 40 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। जी हाँ, ये आंकड़ा हम तक सुबह के 9 बजे तक का पहुंचा है, जिसके मुताबिक 446 अमरनाथ यात्रियों ने पवित्र गुफा में जाकर शिवलिंगम के दर्शन किए हैं।

0: आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण, और हम बात कर रहे थे जो श्रावण का महीना है इसकी हिंदू धर्म में क्या महत्वता है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। श्रोताओं, श्रावण महीने में कांवड़ यात्रा का भी खास महत्व है। लाखों श्रद्धालु गंगा जल लाकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। इसके अलावा इस महीने में नागपंचमी, रक्षाबंधन और श्रावण पूर्णिमा जैसे अहम त्यौहार भी मनाए जाते हैं। श्रावण मास सिर्फ पूजा पाठ का ही नहीं बल्कि संयम, सादगी, सेवा, दान, प्रकृति के समान और आध्यात्मिक चिंतन का भी महीना माना जाता है। यही वजह है कि हिंदू धर्म में श्रावण मास को भक्ति, विश्वास और आस्था की एक अनोखी पहचान माना जाता है। और जो श्रावण का महीना है इसमें जो उपवास रखा जाता है, सोमवार का व्रत, उसकी भी एक बहुत इम्पोर्टेंस है, जिसके बारे में हमने कल के ट्रांसमिशन में बात की थी। और जैसे कि हमने कांवड़ यात्रा, नागपंचमी, रक्षाबंधन और श्रावण पूर्णिमा की बात की, इनको हम तफसीली तौर पर भी डिस्कस करेंगे इसी ट्रांसमिशन में, कोशिश करेंगे इन सब चीज़ों को समझने की। और फिलहाल आपको ये दर्शन रिपोर्ट देते हैं जो हम तक 9 बजे तक का आया था। उसके मुताबिक 446 पवित्र गुफा में 446 यात्री पवित्र गुफा में जाकर शिवलिंगम के दर्शन कर चुके थे, जिनमें 2060 पुरुष, 133 महिलाएं, 9 बच्चे, 3 साधु और 1 साध्वी शामिल हैं। इनके साथ 40 सुरक्षाकर्मी भी इनके हमराह थे। और ये आंकड़ा है 446 का। इस आंकड़े में जैसे इजाफा होता है और हम आप तक फिर वो इन्फॉर्मेशन, वो अपडेट भी पहुँचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप ये विशेष प्रसारण सुनते रहिए और इसका हिस्सा बने रहिए।
1: के लिए कुछ खास जानकारी।
2: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
1: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्ट पेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।

श्री अमरनाथ जी यात्रा पे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ जरूरी सूचना। बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक का रास्ता ऊंचा नीचा है और चप्पल में स्लिप होने का खतरा रहता है, इसीलिए सफर ट्रेकिंग शूज पहनकर करें। दर्शन पर जाते हुए धीमी गति से चलें और किसी तरह का शॉर्टकट ना लें। वार्निंग नोटिस से मार्क की हुई किसी भी जगह पे ना रुके, क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। याद रखिए, बाबा बर्फानी के स्थल को हमें साफ रखना है, इसीलिए ऐसा कुछ ना करें जिससे वहां का वातावरण और सफर का पथ दूषित हो। प्लास्टिक के यूजेज पे सख्त मनाही है और ऐसा करने पे जुर्माना हो सकता है। यात्रा की सभी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन .com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करें।

जी श्रोताओं, आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी श्रीनगर का एफएम बालतल, एफएम पहलगाम 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, न्यूज़ ऑन एआईआर की आराधना चैनल डीटीएच तथा ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर आप हमें सुन रहे हैं। और आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण। आज श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का 34वां दिन है और आज का जो ताज़ा तरीन दर्शन रिपोर्ट हम तक पहुंचा है उसके मुताबिक आज सुबह के 10 बजे तक कुल मिलाकर 670 यात्रियों ने पवित्र गुफा में जाकर शिवलिंगम के दर्शन किए, जिनमें से 407 पुरुष, 186 महिलाएं, 11 बच्चे, 7 साधु, 1 साध्वी और 58 सुरक्षाकर्मी शामिल थे। मौसम बिल्कुल अनुकूल है, मौसम बिल्कुल साफ है, लेकिन साथ में आपको एहतियात करना है। जो आप जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वहाँ फिसलन हो सकती है, वहाँ पे ठंड हो सकती है और आपको लगातार पानी पीने की ज़रूरत है, आपको पर्याप्त भोजन करने की ज़रूरत है। हल्का फुल्का आप खाते रहिए और अपने आप को स्वस्थ तंदुरुस्त रखने की कोशिश कीजिए। और हम बात कर रहे थे, ये जो सावन का महीना चल रहा है इसमें एक यात्रा होती है, एक और यात्रा होती है, कांवड़ यात्रा। भारत की धार्मिक परंपराओं में कांवड़ यात्रा एक निहायत अहम और आस्था से जुड़ी हुई यात्रा मानी जाती है। हर साल श्रावण मास के दौरान लाखों श्रद्धालु, जिन्हें कांवड़िया कहा जाता है, गंगा नदी या दूसरी पवित्र नदियों से जल भरकर भगवान शिव के मंदिर तक पैदल यात्रा करते हैं और वहां जल अभिषेक करते हैं। कांवड़ एक बांस या लकड़ी का एक ढांचा होता है जिसके दोनों सिरों पर जल से भरे कलश या बर्तन लटकाए जाते हैं। यात्री इसे अपने कंधों पर रखकर लंबी दूरी तय करते हैं। इसी दौरान पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ बम बम बोले, हर हर महादेव और जय भोलेनाथ के नारे गूंजते रहते हैं। पौराणिक मान्यता के मुताबिक समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला तो भगवान शिव ने सारे विष को सारे जगत की है जो रक्षा की है उसे अपने कंठ में धारण कर लिया उस विष को। उसके बाद देवताओं ने उन पर जल अर्पित किया ताकि विष की ताप कम हो सके। इस मान्यता की बुनियाद पर आज भी श्रद्धालु श्रावण मास में भगवान शिव को गंगा जल चढ़ाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। एक दूसरी मान्यता के मुताबिक भगवान परशुराम के पहले कांवड़िया के रूप में भी याद भगवान परशुराम को पहले कांवड़िया के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने शिव जी की पूजा के लिए पवित्र जल लाकर अभिषेक किया था।

0: कावड़ यात्रा पर हम आगे भी और बात करेंगे और इन इनसे मुतालिक कुछ और मालूमात, कुछ और तफसीलात भी आपको देंगे। लेकिन हमारा ये विशेष प्रसारण आप सुनते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।
1: श्री अमरनाथ जी यात्रा पे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ जरूरी सूचना। बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक का रास्ता ऊंचा नीचा है और चप्पल में स्लिप होने का खतरा रहता है, इसीलिए सफर ट्रेकिंग शूज पहनकर करें। दर्शन पर जाते हुए धीमी गति से चलें और किसी तरह का शॉर्टकट ना लें। वार्निंग नोटिस से मार्क की हुई किसी भी जगह पे ना रुके, क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। याद रखिए, बाबा बर्फानी के स्थल को हमें साफ रखना है, इसीलिए ऐसा कुछ ना करें जिससे वहां का वातावरण और सफर का पथ दूषित हो। प्लास्टिक के यूजेज सख्त मनाही है और ऐसा करने पे जुर्माना हो सकता है। यात्रा की सभी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन .com पे जाइए या फिर 1446 पे कॉल करें।

श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड भोले बाबा के दर्शन पे जाते हुए आपको हर सुविधा उपलब्ध कराने में हमेशा तत्पर रहेगा। इसीलिए हमारी ये गुजारिश है कि आप अमर

जी श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण। और इस प्रसारण में हम आप तक पहुंचाते हैं जानकारी और हम कोशिश करते हैं कि किसी एक टॉपिक, किसी एक मौजू पर हम बात करें, जहां तक हमारी इन्फॉर्मेशन उस मौजू के हवाले से अवेलेबल हमारे पास होती है वो आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं। और हम आज बात कर रहे थे कांवड़ यात्रा की, और कांवड़ यात्रा में हमने आपको बताया कि कांवड़ यात्रा कैसे की जाती है और क्यों मनाई जाती है। कांवड़ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि अनुशासन, संयम, त्याग, सेवा, समर्पण और समानता का भी प्रतीक है। अनुशासन से हमारी ज़िंदगी, डिसिप्लिन से हमारी ज़िंदगी आसान बनती है। हमें चीज़ें समझने में, चीज़ों को सुलझाने में मदद मिलती है। और संयम, धैर्य और बर्दाश्त की हमें एक ताकत आती है। त्याग का ये जो हमें ज्ञान देती है, उससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए किसी कारणवश कभी कोई त्याग भी करना पड़ता है, अपने अरमानों का त्याग करना पड़ता है या अपनी किसी प्यारी चीज़ का त्याग करना पड़ता है। और जहाँ तक बात रही सेवा की, तो हमें मनुष्य की सेवा के लिए हमेशा उपलब्ध रहना चाहिए। हमें अपने से छोटे और अपने से बड़े मनुष्यों को इज्जत से देखना चाहिए और उनकी हमेशा सेवा करनी चाहिए। और एक दूसरे को समानता की नज़र से देखना चाहिए, क्योंकि अगर हम खुद को बड़ा और दूसरे को छोटा, खुद को ऊंचा और दूसरे को नीचा देखेंगे और नीची नज़र से देखेंगे, तो हमारा सारा किया कराया जो है वो व्यर्थ जाता है। इसलिए हमें अनुशासन से काम लेना चाहिए, संयम, त्याग, सेवा, समर्पण और समानता रखनी चाहिए। इस यात्रा के दौरान कई श्रद्धालु नंगे पांव चलते हैं, सादा भोजन करते हैं, ब्रह्मचर्या का पालन करते हैं और पूरे मार्ग में संयम और चुस्तता का खास ध्यान रखते हैं। रास्ते में जगह जगह भंडारे, विश्राम शिविर, चिकित्सा सेवा और पीने के पानी का इंतज़ाम समाज सेवा की एक खूबसूरत मिसाल पेश करता है। और ऐसी ही मिसाल चलने वाली वार्षिक अमरनाथ यात्रा में भी हमें देखने को मिलता है, जहां पर भंडारे लगे होते हैं, आधार शिविरों में विश्राम का इंतज़ाम होता है यात्रियों के लिए, चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध कराती है प्रशासन और कई सारे इंतज़ाम जो यात्रियों की आसाइश, उनके आराम के लिए उपलब्ध हो सकते हैं वो उनको प्रदान करने की कोशिश की जाती है। और इसका यही मकसद होता है कि जो यात्री आते हैं देश के विभिन्न भागों से या बाहर देशों से, उनकी सेवा में किसी किस्म की कोई कमी ना हो, उनको किसी किस्म का कोई कष्ट, कोई तकलीफ़ देखने को ना मिले। आज के समय में कांवड़ यात्रा सिर्फ धार्मिक आस्था तक महदूद नहीं, बल्कि ये सामाजिक एकता, भाईचारे और भारतीय संस्कृति की झलक भी पेश करती है। हर साल इस यात्रा में करोड़ों भक्त शामिल होते हैं, अपनी श्रद्धा का इजहार करते हैं और भगवान शिव से सुख, शांति, आरोग्य और समृद्धि की कामना करते हैं। इसीलिए कांवड़ यात्रा को भक्ति, विश्वास, संयम और आध्यात्मिक

की एक अनोखी यात्रा माना जाता है जो हर साल श्रावण मास में भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन को नई ऊर्जा और नई पहचान प्रदान करती है। कांवड़ यात्रा से मुतलिक बात हो गई, अब आगे हम नागपंचमी पर बात करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अगर समय ने इजाज़त दिया तो रक्षाबंधन पर भी बात होगी और श्रावण पूर्णिमा से भी मुतालिक हम बात करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल के लिए हमारा ये विशेष प्रसारण जारी है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और जो हमने आपको आखिरी दर्शन रिपोर्ट दिया था उसके मुताबिक 670 यात्रियों ने पवित्र गुफा में जाकर शिवलिंगम के दर्शन किए थे, जिनमें 407 पुरुष, 186 महिलाएँ, 11 बच्चे, 7 साधु, 1 साध्वी और 58 सुरक्षाकर्मी शामिल थे।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्टपेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।
2: जी श्रोताओं, हमारे पास ताज़ा तरीन दर्शन रिपोर्ट आया है दिन के 11 बजे तक का, जिसके मुताबिक 1009 श्रद्धालु ने पवित्र गुफा में जाकर शिवलिंगम के दर्शन किए, जिनमें 640 पुरुष, 274 महिलाएं, 14 बच्चे, 8 साधु, 4 साध्वीज और 1 ट्रांसजेंडर के साथ साथ 68 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। जी हाँ, दिन के 11 बजे तक का आंकड़ा हमने आपको बताया, जिसमें 1009 यात्रियों ने आज दिन के 11 बजे तक पवित्र गुफा में जाकर शिवलिंगम के दर्शन किए। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण जारी है, आप इस प्रसारण का हिस्सा बने रहिए और हमें सुनते रहिए।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्ट पेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्री पेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।

जी श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण, और इस प्रसारण में हम आप तक यात्रा से जुड़ी जानकारी के साथ साथ कुछ अन्य जानकारियां पहुंचाने की भी कोशिश करते हैं। और हम बात कर रहे थे जो इस वक्त श्रावण का महीना चल रहा है, इसमें कुछ परंपराएं, कुछ त्यौहार मनाए जाते हैं, और इन्हीं त्यौहारों में नाग पंचमी का एक त्यौहार भी आता है। और हिंदू धर्म में नाग पंचमी का जो है एक बहुत ही बड़ा महत्व है। नागपंचमी एक निहायत ही पवित्र और आस्था से जुड़ा हुआ पर्व माना जाता है। यह पर्व हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है और इनसे परिवार की खुशहाली, अच्छी सेहत, सुख शांति और सुरक्षा की प्रार्थना की जाती है। श्रोताओं, हिंदू मान्यताओं के मुताबिक नाग सिर्फ एक सांप नहीं बल्कि दिव्य शक्ति और प्रकृति के रक्षक माने जाते हैं। इसलिए नाग पंचमी के दिन श्रद्धालु नाग देवता की मूर्ति या चित्र की पूजा करते हैं और उन्हें दूध, फूल, हल्दी, कुमकुम और दीगर पूजा सामग्री अर्पित करते हैं और अपने घरों में सुख समृद्धि की कामना करते हैं।

कथाओं में नागों का जिक्र कई जगह मिलता है। शेषनाग को भगवान विष्णु की श्रेया माना जाता है, जबकि वास्की नाग ने समुद्र मंथन के दौरान रस्सी का काम किया था। इसी तरह तिक्षक नाग और कालिया नाग की कथाएं भी हिंदू ग्रंथों में वर्णित हैं, जो नागों की धार्मिक महत्ता को उजागर करती हैं। नागपंचमी से जुड़ी एक मान्यता ये भी है कि इस दिन खेतों में हल नहीं चलाया जाता और ज़मीन की खुदाई से भी परहेज किया जाता है, ताकि ज़मीन के अंदर रहने वाले सांपों और दीगर जीवों को नुकसान ना पहुंचे। इस परंपरा के पीछे प्रकृति और जीव जंतु के प्रति करुणा और सम्मान की एक झलक दिखती है और एक संदेश मिलता है।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
0: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें।

0: खबर आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रेपो दर को 5.25% पर बरकरार रखा है। मौद्रिक नीति समिति के फैसले की घोषणा करते हुए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि देश की आर्थिक वृद्धि को मजबूत मांग का समर्थन मिल रहा है और ये विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी हुई है।
1: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments, as well as the outlook, the MPC decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 5.25%.
0: श्री मल्होत्रा ने कहा कि वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा, जिसके चलते केंद्रीय बैंक ने वर्ष 2026-27 के लिए अपने वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि अनुमान को संशोधित करके 6.7% कर दिया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष प्रमुख व्यापार मार्गों को बाधित करके वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियां पेश कर रहा है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि बैंक ने वित्त वर्ष 2027 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अपने अनुमान को पहले के 5.1% से घटाकर 5% कर दिया है। रिजर्व बैंक ने घरेलू अर्थव्यवस्था पर आशावादी रुख अपनाते हुए वर्ष 2026-27 के लिए अपने विकास अनुमान को बढ़ाया और मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान को घटाया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग करने लगे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
2: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: उधर राज्यसभा में भी इसी मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। जम्मू कश्मीर से भाजपा सांसद सतपाल शर्मा ने कहा कि 7 वर्ष पहले आज ही के दिन अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था। श्री शर्मा ने कहा कि आज का दिन न केवल जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि फैसले ने जम्मू कश्मीर को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। श्री शर्मा ने कहा कि दशकों तक अनुच्छेद 370 ने जम्मू कश्मीर को अलग थलग रखा। श्री शर्मा ने यह भी बताया कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करना भारत की एकता और अखंडता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम है। हरियाणा से भाजपा सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा को भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं और इस वक्त हमारे पास ताज़ा तरीन जो दर्शन रिपोर्ट आया है वो इस प्रकार है। दिन के 12 बजे तक कुल मिलाकर 1442 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में जाकर शिवलिंगम के दर्शन किए हैं, जिनमें 947 पुरुष, 379 महिलाएं, 16 बच्चे, 11 साधु, 5 साध्वी और 1 ट्रांसजेंडर के साथ साथ 83 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। जी हाँ, ये आंकड़ा हम तक पहुंचा है दिन के 12 बजे तक का, जिसके मुताबिक 1442 श्रद्धालु ने पवित्र गुफा में जाकर शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। और इसी के साथ साथ हमारे पास अगले 24 घंटे का जो वेदर फोरकास्ट है वो भी आया है। 5 अगस्त को हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें होंगी, 6 से 8 अगस्त को भी बारिशें होने का जो अनुमान है वो व्यक्त किया गया है। 9 से 11 अगस्त को कुछ एक जगहों पर हल्की बूंदाबांदी या बारिश हो सकती है और 12 से 15 अगस्त के बीच भी कहीं कहीं पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें होने की आशंका जताई गई है। और 5 से लेके 11 अगस्त तक, 5 अगस्त और 9 और 11 अगस्त को भी भारी से दरमियाना दर्जे की बारिशें होने की आशंका जताई गई है, जो यात्रा मार्ग का इलाका है इसके ऊपर। और आपको ये भी चेतावनी दी जा रही है कि जो लैंडस्लाइड्स आते हैं, पस्सियाँ गिराती हैं और भूस्खलन होता है, उससे अपने आप को बचाने के लिए ऐसी जगहों से दूर रहें जो पहाड़ों के ज़्यादा करीब हो या जहाँ पर ज़्यादा बारिश हो। आपको उसके लिए सूचित किया जाता है कि आप सुरक्षित स्थानों का रुख करें और अपने आप को सुरक्षित रखें।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
0: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य

साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज़ ऑन AIR की आराधना चैनल DTH तथा OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। अगर आप भी इस प्रसारण का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमारे साथ कोई अपनी बात शेयर करना चाहते हैं, कोई सुझाव कोई शिकायत हम तक पहुँचाना चाहते हैं, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9596990954 पर SMS या WhatsApp के ज़रिए हम तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी akashvanibaltal@gmail.com पर भी आप हमसे राबिता कायम कर सकते हैं। और अगर आप श्रीनगर या जम्मू में प्रस्थान कर रहे हैं और आपको कोई कष्ट है, कोई समस्या है, तो आप प्रशासन के द्वारा जारी किए गए 2 टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर्स पर भी बात कर सकते हैं और अपनी कोई भी शिकायत उन तक पहुँचा सकते हैं। श्रीनगर के लिए हमारा टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है 1800 180 7199, और इसी तरह से जम्मू के लिए हमारा टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है 1800 180 7198। तो हम बात कर रहे थे श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के सिलसिले के तहत, जो अभी श्रावण का महीना चल रहा है और इसमें हिंदू धर्म में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, और हम अभी बात कर रहे थे नाग पंचमी की। नाग पंचमी भारत के अलग अलग राज्यों में मनाया जाता है मुख्तलिफ तरीक़ों से। कहीं मंदिर सजाए जाते हैं, कहीं विशेष पूजा और भजन कीर्तन का आयोजन होता है, जबकि कई स्थानों पर धार्मिक यात्राएं भी निकाली जाती हैं। लोग अपने घरों के दरवाज़ों पर नाग की आकृति बनाकर और मंगल और रक्ष की कामना करते हैं। आज के दौर में नाग पंचमी हमें सिर्फ धार्मिक आस्था ही नहीं बल्कि प्राकृतिक संरक्षणा और जीव दया का भी संदेश देती है। सांप हमारे माहौल के लिए निहायत अहम है, क्योंकि वो खेतों में चूहों और दीगर नुकसानदेह जीवों की संख्या को निरस्त करते हैं, जिससे फसलों की रक्षा होती है और कुदरती जो संतुलन है वो बरकरार रहता है। माहिरीन का मानना है कि नाग पंचमी के मौके पर सांपों को पकड़कर परेशान करना या उन्हें दूध पिलाना उचित नहीं, क्योंकि सांप कुदरती तौर पर दूध

0: दूध नहीं पीते और इससे इन्हें नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए इस पर्व को श्रद्धा के साथ साथ जंगली जीवों के समान और पर्यावरण संरक्षण के भाव से मनाया जाना चाहिए। इसी तरह नागपंचमी आस्था, परंपरा, प्रकृति से प्रेम और सभी जीवों की समानता का एक ऐसा पवित्र पर्व है जो हमें ये सिखाता है कि इंसान और प्रकृति एक दूसरे के लिए हैं और इनके बीच संतुलन ही जीवन की असली बुनियाद है। और ये सिर्फ हमें हिंदू धर्म नहीं बल्कि दुनिया में मौजूद हर एक धर्म सिखाता है कि हमें जीव जंतु की रक्षा करनी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी का आदर किसी की इज्जत करेंगे तो हमें हमारी भी कोई इज्जत कोई आदर करेगा। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण जारी है। हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और भक्ति संगीत सुनते रहिए।
1: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
1: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल और FM पहलगाम के संग। श्रोताओं, अपडेट्स के लिए हम यहाँ पे बैठे रहते हैं आपके सेवा में प्रातः 7 बजे से 6 बजे तक। कुछ क्षणों में आपको आकाशवाणी दिल्ली लिए चलेंगे, जहाँ से आप समाचार समाप्त करेंगे। जरा सी प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35 ए को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता और खेल जैसे क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं, वंचित समुदाय सहित उन लोगों को अधिकार मिले हैं जो दशकों तक अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन इसीलिए भी विशेष है क्योंकि देश डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी की परिकल्पना 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक रूप से साकार हुई। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि हर नागरिक को बड़े सपने देखने, उन्हें साकार करने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का अवसर सुनिश्चित किया जाएगा। राज्यसभा में आज जम्मू कश्मीर से भाजपा सांसद सतपाल शर्मा ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करना भारत की एकता और अखंडता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम है। संसद परिसर में हमारे संवाददाता से बातचीत में श्री शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के प्रत्येक निवासी पर अब हर सरकारी योजना का लाभ पहुंच रहा है।
1: आज ही के दिन 2019 में 370 को निरस्त किया गया और हम सब जानते हैं कि जिस ऊंचाइयों की तरफ आज जम्मू कश्मीर अग्रसर है वो अपने आप में दर्शाता है कि 370 हमारे ऊपर एक कलंक था, वो हट गया है। हमारी मातृशक्ति जिसकी शादी हमारे प्रदेश के बाहर होती थी, उनका हक जो था वो छिन जाता था, उनके प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो चले जाते थे। वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग 370 हटने के बाद उनको उनका हक मिला है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को एक ऐतिहासिक दिन बताया है। 7 वर्ष पहले आज ही के दिन अनुच्छेद 370 को हटाया गया था। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप ही इस संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किया गया था। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग करने लगे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
2: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी कर प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: वहीं सुबह 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। हरियाणा से भाजपा सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा को भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश के विभिन्न हिस्सों में ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकार 300 ऐसे संस्थानों को अनुमति दे चुकी है। श्री गडकरी ने कहा कि देश में लगभग 22 लाख चालकों की कमी है। श्री गडकरी ने सड़क दुर्घटनाओं में चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि देश में हर वर्ष लगभग 1,80,000 लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत हो जाती है। रिजर्व बैंक ने रेपो दर को 5.25% पर बरकरार रखा है। मौद्रिक नीति समिति ने आज इस फैसले की घोषणा की। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि देश की आर्थिक वृद्धि को मजबूत मांग का समर्थन मिल रहा है और ये विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी हुई है।
3: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial

0: financial developments as well as the outlook, the MPC decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 5.25%.
1: श्री मल्होत्रा ने कहा कि वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा है। झारखंड में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और झारखंड पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर सरायकेला खरसावा से प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी संगठन के 3 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। महानिरीक्षक अभियान नरेंद्र कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओ, आप समाप्त कर रहे हैं विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ यात्रा 2024। आपको बता दें, आज किसी भी यात्रा कॉन्वॉय को जम्मू से बालतल की तरफ नहीं जाने की इजाज़त है, और बालतल से जम्मू के लिए कोई भी यात्री कॉन्वॉय जो है जम्मू की ओर नहीं आ सकती है। लेकिन जो यात्री पहले से बालतल में मौजूद थे, उन्हें शेड्यूल के मुताबिक पवित्र गुफा के और दर्शन के लिए ले जाना उसके लिए इजाज़त दी गई है। लेकिन जो भी कॉन्वॉय जम्मू से बालतल की ओर, उनको इजाज़त नहीं दी जाएगी, और वहीं से बालतल से जम्मू की ओर किसी भी यात्रा को इजाज़त नहीं है। तो ये किसी कारण जो है प्रशासन ने आज के लिए जो निर्णय लिया है, तो आशा यही कि जल्द ही जो है यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। श्रोताओं, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इस यात्रा को सुगम एवं सुरक्षित बनाने के लिए सभी आवश्यक इंतज़ाम किए हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, अभी जो यात्रा है खाली बालतल की मार्ग से जारी है, क्योंकि पहलगाम का रास्ता है वो किसी कारण बंद है, वहाँ से काम चल रहा है। और आशा ये भी कर रहे हैं कि कुछ ही दिनों में यात्रा के लिए पहलगाम का मार्ग भी खोल दिया जाएगा। तो सभी जो है स्वास्थ्य बुनियादी सुविधाएं सभी फराहम की गई है यात्रियों के लिए। हमारी यही मनोकामना है सभी यात्रियों के लिए कि इनकी यात्रा जो है सफल और मंगलमय हो।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल आर्य FM पहलगाम की संग। जी हां श्रोताओं, सभी यात्रियों से निवेदन है कि कृपया अपने सामान का ध्यान रखें, कृपया लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करें। यात्रा के दौरान सफाई बनाए रखें और कचरा डस्टबिन में डालें। प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को पहले सुविधा दें। अपना यात्रा परमिट और आईडी हमेशा अपने साथ रखें। किसी भी असुविधा स्थिति में नज़दीकी सुरक्षा कर्मियों से संपर्क करें। कृपया बिना अनुमति के किसी भी प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश ना करें। जी हाँ, और साथ ही साथ आपके साथ अपडेट साझा करना चाहेंगे, जैसे कि इकबाल जी ने किया होगा ये 12 बजे का दर्शन अपडेट। एक बार फिर मैं आपके लिए, आपके साथ साझा करूंगी इस अपडेट को। तो 12 बजे तक जो अपडेट है हमारे पास, इसके अनुसार जो है 1,442 तीर्थ यात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए हैं। पुरुषों की संख्या 947, महिलाएं 379, बालक 16, साधु 11, साध्वी 5, ट्रांसजेंडर 1 और सुरक्षाकर्मी 83। तो कुल आंकड़ा जो हमारे पास यहाँ पे दिखा रहा है दर्शन अपडेट 12 बजे का, 1,442 तीर्थ यात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए हैं। बने रहिए हमारे संग और सुनते रहिए विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल और FM पहलगाम के संग। इसके अलावा विभिन्न प्लेटफॉर्म पर भी हम आपके सेवा में उपस्थित रहते हैं। तो कुछ ही क्षणों में हम आपको एक बार फिर आकाशवाणी दिल्ली लिए चलेंगे, जहां से आप उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी में समाचार समाप्त करेंगे।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दफा 370 को मनसूख किए जाने के बाद जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के लोगों की जिंदगी यकसर तब्दील हो गई है। आरबीआई ने इस माली साल के दौरान 6.7% मजमूई शरह तरक्की का तखमीना लगाया है। उसने कहा है कि इकतसादी नशोनुमा को मुस्तहकम मांग से मदद मिल रही है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाईयों में कई मामलात पर रखने का सिलसिला जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हुक्काम नौजवान मुजाहिरीन से निमटते वक्त तहम्मुल से काम लें। रांची में JPSC और JSSC इम्तिहानात में बेजाबतगियों के खिलाफ तलबा का एहतजाज तेज हो गया है। और बैडमिंटन में 3 खिलाड़ी आसन में कोरिया ओपन के खवातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल के दूसरे राउंड में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 7 साल पहले दफा 370 और 35 से मनसूख किए जाने के बाद से जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के अवाम की जिंदगियों में काया पलट कर देने वाली तब्दीलियां आई हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि मरकज के जेर इंतजाम दोनों इलाकों में बुनियादी ढांचे में तौसी हुई है और तालीम, हिफ्जान सेहत, सनतकारी और खेलकूद जैसे शोबों में मवाक़े में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि ख़वातीन नहायत पसमानदा बिरादरियों या जिन्हें दहाइयों से उनके बुनियादी आईनी हकूक से महरूम रखा गया है, उन सबको आईन के मुकम्मल नफाज के साथ अब बा इख्तियार बनाया गया है। वजीर आजम ने इस बात को भी नुमाया किया कि आज के दिन को इससे भी ज़्यादा अहमियत हासिल है क्योंकि मुल्क इस साल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 125वां यौम पैदाइश मना रहा है। बीजेपी ने दफा 370 मनसूख किए जाने के आज 7 साल मुकम्मल होने के मौके पर 5 अगस्त को एक तारीखी दिन करार दिया है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी के तर्जुमान गौरव भाटिया ने कहा कि आईन की ये शिक आईन की रूह को बरकरार रखते हुए मनसूख की गई थी। उन्होंने कहा कि अगरचे खुद दफा 370 आरिजी तौर पर नाफिज हुई थी, लेकिन किसी भी साबिका हुकूमत ने कभी इसे खत्म करने का इरादा जाहिर नहीं किया। उन्होंने कहा कि वजीर दाखिला अमित शाह ने 2019 में ये जरूरी कदम उठाया जिससे सरदार पटेल के अज़्म की अक्कासी होती है। दफा 370 मनसूख किए जाने के 7 साल बाद जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, हुक्मरानी, सियाहत, सरमायाकारी और सिक्योरिटी से मुतालिक शोबों में काबिल जिक्र तरक्की हुई है। मरकज के जेर इंतजाम इलाके में बेहतर बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, पब्लिक खिदमात और इकतसादी तरक्की, बेहतर हुक्मरानी और बेहतर मयारी जिंदगी की बदौलत तेज रफ्तार काया पलट कर देने वाली तब्दीली आई है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: 5 अगस्त 2019 के बाद से मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके के बुनियादी ढांचे में तेज़ रफ्तार तरक्की का मुशाहदा किया गया है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को चनाब और अंजी घाट रेल पुलों समेत नई सुरंगों, कई बाईपास और कई मकामात पर सड़क को चौड़ा करने से मुतालिक प्रोजेक्टों से बेहतर बनाया गया है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल रबते की बदौलत कश्मीर वादी को कौमी रेलवे नेटवर्क से जोड़ा गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस से रेल कनेक्टिविटी मजीद मुस्तहकम हुई है, जबकि जैड मोड़ टनल की बदौलत पूरे साल सोनमर्ग तक पहुंचा जा सकता है और जोजिला टनल की तामीर जल्द ही मुकम्मल होने वाली है, जिसकी बदौलत स्ट्रेटेजिक तौर पर अहमियत के हामिल श्रीनगर लेह शाहराह पर पूरे साल आमोदरफ्त हो सकेगी। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक साल 2019 के बाद से दहशतगर्दी से मुतालिक वाकयात में 83% तक की कमी दर्ज की गई है। इसके अलावा सिविलियन और सिक्योरिटी फोर्सेस की हलाकतों में भी तेजी से कमी आई है, जबकि पत्थर फेंकने के वाकयात तकरीबन खत्म हो गए हैं।

0: नगर से अशफाक शाह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल मालिक।
1: भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मौजूदा माली साल में जीडीपी की तरक्की के 6.7% रहने का तखमीना लगाया है। मरकजी बैंक ने रेपो रेट में कोई तब्दीली ना करते हुए इसे 5.25% पर बरकरार रखा है। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि मुल्क की मुआशी तरक्की में मुस्तहकम मांग के सबब भारत दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली बड़ी मईशत बना हुआ है। उन्होंने कहा कि इस मुआशी साल में अप्रैल से जून तक की तिमाही में मुल्क की मईशत की कारकर्दगी तवक्को से बेहतर रही। आज मुआशी पॉलिसी से मुतालिक कमेटी के फैसले का ऐलान करते हुए जनाब मल्होत्रा ने कहा कि आरबीआई ने रेपो रेट में कोई तब्दीली न करने का फैसला किया है। रेपो रेट वो शरह सूद है जिस पर मरकजी बैंक कमर्शियल बैंकों को मुख्तसर मुद्दत के लिए कर्ज देता है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई में नीट मामले पर तलबा के एहतजाज के दौरान पुलिस की मुबैना कार्रवाई समेत कई मामलों पर अपोजिशन के शोरगुल की वजह से रखना पड़ा। लोकसभा की कार्रवाई दिन के 2 बजे तक के लिए जबकि राज्यसभा की कार्रवाई पहले 12 बजे तक के लिए उसके बाद 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। जब लोकसभा का इजलास 11 बजे शुरू हुआ तो स्पीकर ओम बिरला ने वक्फाई सवालात की कार्रवाई शुरू करने की कोशिश की लेकिन अपोजिशन अरकान ने तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई का मामला उठाया। जनाब बिरला ने तमाम अरकान से जोर देकर कहा कि वो वक्फाई सवालात की कार्रवाई चलाने में तआवुन करें। उन्होंने कहा कि वक्फाई सवालात कार्रवाई का एक अहम हिस्सा है जो हर एक मेंबर को अवाम के मामलात उठाने का मौका फराहम करता है।
2: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन करकर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
1: जब ऐवाने बाला का इजलास शुरू हुआ तो सदर नशीं सीपी राधाकृष्णन ने अपोजिशन के शोरगुल के दरमियान वक्फाई सिफर की कार्रवाई शुरू की लेकिन शोरगुल की वजह से सदर नशीं को ऐवान की कार्रवाई दिन के 12 बजे तक के लिए मुलतवी करनी पड़ी। जम्मू कश्मीर के बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट सतपाल शर्मा ने दफा 370 मनसूख किए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि 7 साल पहले आज ही के दिन ये कदम उठाया गया था। उन्होंने कहा कि आज का ये दिन न सिर्फ जम्मू कश्मीर की तारीख में बल्कि पूरे मुल्क की तारीख में एक अहम दिन है।
3: आज ही के दिन 2019 में 370 को निरस्त किया गया और हम सब जानते हैं कि जिस ऊंचाइयों की तरफ आज जम्मू कश्मीर अग्रसर है वो अपने आप में दर्शाता है कि 370 हमारे ऊपर एक कलंक था वो हट गया है। हमारी मातृशक्ति जिसकी शादी हमारे प्रदेश के बाहर होती थी उनका हक जो था वो छिन जाता था, उनके प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो चले जाते थे। वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग 370 हटने के बाद उनको उनका हक मिला है।
1: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हुक्काम नौजवान तालिबे इल्म मुजाहिरीन से निमटते वक्त तहम्मुल से काम लें। अदालत ने कहा कि तशद्दुद रोकने की गरज से की जाने वाली किसी भी पुरतशद्दुद कार्रवाई से सूरत हाल मजीद खराब होगी। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही में एक बेंच ने सीजेपी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए ये बात कही। चीफ जस्टिस ने कहा कि सबसे ताकतवर तरीका ये है कि बात को सुना जाए कि एहतजाज करने वाले क्या कह रहे हैं और ये समझा जाए कि वो क्यों एहतजाज कर रहे हैं। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी इम्तिहानात में मुबैना बेजाबतगियों के खिलाफ तलबा का एहतजाज दिन ब दिन तेज हो रहा है। एहतजाज करने वाले तलबा ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए आने वाले मॉनसून इजलास के दौरान झारखंड असेंबली का घेराव करने के मंसूबे का ऐलान किया है। सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस ने एक मुश्तरका कार्रवाई में सरायकेला खरसावां जिले से ममनुआ सीपीआई माओनवाज के 3 कट्टर अरकान को गिरफ्तार कर लिया है। इंस्पेक्टर जनरल ऑपरेशंस नरेंद्र कुमार सिंह ने गिरफ्तारी की तस्दीक की है। आसन में जारी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में ईशा रानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रियांशी वलीसेट शेट्टी खवातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में ईशा रानी बरुआ ने जनूबी कोरिया की खिलाड़ी को शिकस्त दी जबकि तन्वी शर्मा ने चीन की खिलाड़ी आन की युआन को हराया। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दफा 370 को मंसूख किए जाने के बाद जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के लोगों की जिंदगी यकसर बदल गई है। आरबीआई ने इस माली साल के दौरान 6.7% مجموعی

0: the Korea Open in Asan. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। रिजर्व बैंक का इस वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान। कहा, मजबूत मांग के कारण आर्थिक वृद्धि बनी हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, युवा प्रदर्शनकारियों के साथ अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज। असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत की शरानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रियांशी वेलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35 ए को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता और खेल जैसे क्षेत्रों में अवसर भी बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं, वंचित समुदाय सहित उन लोगों को अधिकार मिले हैं जो दशकों तक अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन इसीलिए भी विशेष है क्योंकि देश इस वर्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता के प्रति डॉक्टर मुखर्जी का आजीवन समर्पण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी की परिकल्पना 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक रूप से साकार हुई। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सतपाल शर्मा ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण और विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद पिछले 7 वर्षों में जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई है।
2: आज ही के दिन 2019 में 370 को निरस्त किया गया और हम सब जानते हैं कि जिस ऊंचाइयों की तरफ आज जम्मू कश्मीर अग्रसर है वो अपने आप में दर्शाता है कि 370 हमारे ऊपर एक कलंक था, वो हट गया है। हमारी मातृशक्ति जिसकी शादी हमारे प्रदेश के बाहर होती थी, उनका हक जो था वो छिन जाता था, उनके प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो चले जाते थे। वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग 370 हटने के बाद उनको उनका हक मिला है।
1: भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि क्षेत्र में राष्ट्रवाद की भावना और मजबूत हुई है और अब शासन राजनीतिक परिवारों के बजाय जनता द्वारा संचालित है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को एक ऐतिहासिक दिन बताया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप ही इस संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किया गया था।
3: अनुच्छेद 370 को उखाड़ के फेंक दिया गया था जो कि हमारे संविधान में लिखा था, ऑनरिंग द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 370 वॉज एब्रोगेटेड। आर्टिकल 370 स्टार्टेड विद द वर्ड टेम्पररी बट नोबडी हैड द विल टू एब्रोगेट इट।
1: अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 7 साल बाद जम्मू कश्मीर में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। सड़क, रेल और अन्य बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है, संपर्क व्यवस्था बेहतर हुई है, सरकारी सेवाएं मजबूत हुई हैं और पर्यटन, निवेश तथा सुरक्षा की स्थिति में भी सुधार आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रदेश में इससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं।
4: अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे में तेजी से विकास हुआ है। नई सुरंगें और सड़कों के चौड़ीकरण से जुड़ी परियोजनाओं से जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को विकसित किया गया है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, जिसमें चिनाब और अंजीखड रेल पुल शामिल है, के पूरा होने से कश्मीर घाटी तक रेल संपर्क सुनिश्चित हुआ है। जेड मोड टनल ने सोनमर्ग तक हर मौसम में पहुँच सुनिश्चित की है, जबकि जोजिला सुरंग का काम पूरा होने वाला है और ये नैतिक रूप से महत्वपूर्ण श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर हर मौसम में पहुंच प्रदान करेगी। वर्ष 2024 में यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या 2,35,00,000 से अधिक रही, जिसमें 65,000 से अधिक विदेशी पर्यटक शामिल थे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2019 से केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 18,000 करोड़ का निवेश हुआ है। 2,200 से अधिक औद्योगिक इकाइयां

0: स्थापित की गई हैं और 26 नए औद्योगिक ढांचे विकसित किए गए हैं। 41,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं और लगभग 9,81,000 स्वरोजगार के अवसर भी सृजित हुए हैं। इन वर्षों में सुरक्षा की स्थिति में भी काफी सुधार देखने को मिला है। श्रीनगर से इशफाक शाह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो दर को 5.25% पर यथावत रखा गया है।
2: After a detailed assessment of the evolving
0: परिवर्तनशील आर्थिक परिस्थितियों और भविष्य के अनुमानों के विस्तार से समीक्षा करने के बाद मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट 5.25 पर ही बरकरार रखने का निर्णय लिया है।
1: रेपो दर वो ब्याज दर है जिस पर RBI सरकारी प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि मजबूत मांग के कारण देश में आर्थिक वृद्धि बनी हुई है और भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन अपेक्षा से बेहतर रहा। बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई का अनुमान 5.1% से घटाकर 5% कर दिया है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि हाल में महंगाई बढ़ने का मुख्य कारण खाद्य और ईंधन की कीमतों में वृद्धि रही।
2: हेडलाइन इन्फ्लेशन हैज एज्ड अप।
0: उम्मीद के मुताबिक मुद्रास्फीति आधार से थोड़ी ऊपर चली गई है। हालांकि पहले तिमाही में वास्तविक महंगाई दर अनुमान से थोड़ी कम रही। इससे पता चलता है कि लागत का दबाव कीमतों पर पूरी तरह से नहीं पड़ा है। महंगाई बढ़ने की मुख्य वजह ईंधन और खाद्य वस्तुएं हैं। अब तक कीमतों के दबाव के हर तरफ फैलने के कोई खास संकेत नहीं मिले हैं। कीमती धातुओं को छोड़कर महंगाई दर पहले के अनुमान के मुताबिक ही नियंत्रण में है।
2: As projected earlier.
1: उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में बेहतर आर्थिक प्रदर्शन को देखते हुए RBI ने वर्ष 2026-27 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है।
2: रियल GDP ग्रोथ फॉर दिस ईयर।
0: मौजूदा वर्ष के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी का अनुमान अब 6.7% है। ये हमारे पिछले अनुमानों से 10 आधार अंक अधिक है। पहली तिमाही में 7%, दूसरी तिमाही में 6.4%, तीसरी तिमाही में 6.5% और चौथी तिमाही में 6.8%।
2: Q4 at 6.8%.
1: श्री मल्होत्रा ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से प्रमुख व्यापारिक मार्ग प्रभावित हो रहे हैं जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बना हुआ है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि यदि सब कुछ तय कार्यक्रम के अनुसार रहा तो अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में प्लास्टिक के नोट चलन में आ जाएंगे। मुंबई में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्लास्टिक के नोट अधिक टिकाऊ होते हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
3: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो। कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
1: सदन की कार्यवाही फिलहाल अभी जारी है। राज्यसभा में पहले स्थगन के बाद सभापति CP राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। सरकार 300 ऐसे संस्थानों को अनुमति दे चुकी है। श्री गडकरी ने यह भी कहा कि देश में लगभग 22,00,000 चालकों की कमी है। हरियाणा से भाजपा सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा को भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। झारखंड में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है। आंदोलनकारी छात्रों ने आगामी मॉनसून सत्र के दौरान अपनी मांगों को मनवाने के लिए झारखंड विधानसभा का घेराव करने की योजना की घोषणा की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विद्यार्थियों ने संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की है।
4: राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे छात्रों ने कल से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र के दौरान विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। छात्रों का कहना है कि उन्हें किसी का इस्तीफा नहीं बल्कि संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द कर राज्य के बाहर से हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों से न्यायिक जाँच चाहिए। छात्रों ने CID जाँच को नाकाफी बताया है। छात्रों के विधानसभा घेराव के ऐलान के बाद CID की कार्रवाई और तेज हो गई है। CID ने इस मामले में 3 और लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि युवा छात्र प्रदर्शनकारियों को लेकर प्रतिक्रिया देते समय अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हिंसा को रोकने के लिए किसी भी प्रकार की हिंसक प्रतिक्रिया से स्थिति और बिगड़ जाएगी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कांग्रेस जनता पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। याचिका में दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में कांग्रेस जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा, जिसमें पत्थरबाजी के आरोप भी शामिल है, के पार्टी की कथित जिम्मेदारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। लोकसभा ने आज बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 पारित कर दिया है। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ये विधेयक सदन में पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े साक्ष्यों के कानून को मौजूदा डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था के अनुरूप बनाना है। इसके जरिए बैंकिंग प्रणाली की वर्तमान जरूरतों के अनुसार कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाया जाएगा। विधेयक में ये भी प्रावधान है कि बैंकों के रिकॉर्ड की इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्रति को अदालत में वैध और कानूनी साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा। लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। झारखंड में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और झारखंड पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर सरायकेला खरसावा से प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी संगठन के 3 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। महानिरीक्षक अभियान नरेंद्र कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। उत्तरी कर्नाटक के यादगीर जिले के कडेचूर बडियाल औद्योगिक क्षेत्र में आज सुबह रासायनिक रिसाव के कारण 3 श्रमिकों के दम घुटने से मौत हो गई। रिसाव के संपर्क में आए 2 श्रमिकों को रायचूर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। भोपाल में तीसरे ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक शुरू हो गई है। अनेक देशों के प्रतिनिधि 4 दिन के इस विचार विमर्श में भाग लेने के लिए भोपाल पहुंचे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 107 अंक गिरकर 78,322 पर और निफ्टी 94 अंक फिसलकर 24,521 पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और लद्दाख में अगले 2 दिन तक तेज बारिश की आशंका है। ओडिशा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में इस बार मॉनसून में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है।
5: उड़ीसा के बाढ़ प्रभावित जिलों में बड़ी नदियों का जलस्तर घटने के साथ ही राहत और बहाली का काम युद्ध स्तर पर जारी है। हीराकुद बांध के 5 और स्लुइस गेट बंद कर दिए गए हैं, जिससे बाढ़ का पानी छोड़ने वालों गेटों की संख्या घटकर 8 रह गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है, जबकि आज 13 जिलों के लिए येलो वार्निंग लागू है। उड़ीसा में मौजूदा मानसून सीजन के दौरान सामान्य से 26% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: और खेलों में भारत की ईशा रानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रेयांशी वलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गए हैं। वहीं पुरुष सिंगल्स में विश्व नंबर 1 किदांबी श्रीकांत, किरण जॉर्ज, रौनक चौहान, सानिध दयानंद और थारू मन्नेपल्ली आज खेलेंगे। राष्ट्रपति भवन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आधिकारिक कार्यक्रमों के दौरान मिले 300 चुनिंदा उपहारों की आज से ऑनलाइन नीलामी शुरू कर दी है। ये नीलामी ई उपहार पोर्टल पर की जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। रिजर्व बैंक का इस वित्त वर्ष में GDP वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान। कहा, मजबूत मांग के कारण आर्थिक वृद्धि बनी हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा युवा प्रदर्शनकारियों के साथ अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज। असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत की ईशारानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रियांशी वलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का

0: ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं। FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz पर DTH की आराधना सर्विस एवं न्यूज ऑन एयर के मोबाइल ऐप और प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी हम आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। जी हाँ, आज यात्रा जैसे कि हमने पहले भी आपके साथ ये साझा किया, आज यात्रा नहीं है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला कुछ सोचकर ही किया होगा। तो आपको बता दें कि आज जम्मू से बालतल की तरफ कोई भी यात्रा कॉन्वॉय जो है रवाना नहीं किया गया उस कॉन्वॉय को, और बालतल से जम्मू की तरफ भी कोई रिटर्न कॉन्वॉय नहीं आई। लेकिन जो यात्री जो है जो पहले से ही बालतल में मौजूद थे, उन्हें निर्धारित शेड्यूल के मुताबिक पवित्र गुफा की ओर जाने की इजाज़त है और उनकी यात्रा जो है दर्शन के लिए जारी है। तो आपको ये भी साथ में कहेंगे, ये भी आपके साथ साझा करना चाहेंगे कि जैसे कि पहले भी मैंने कहा कि बिना अनुमति के, कि ये हम सभी यात्रियों के लिए कह रहे हैं कि यात्रा के दौरान जो है शांति और अनुशासन बनाए रखें, सभी यात्रियों को शुभ और सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं, अपनी जो है अपनी सेहत का ध्यान रखें और बारी बारी पानी पिए, अपना सेहत बहुत ही ज़रूरी है, अपन स्वस्थ रहना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। भीड़ से बचने के लिए निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें, अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें, किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें, केवल आधिकारिक घोषणाओं पर ही विश्वास करें। हमारी यही मनोकामना, आप सबकी यात्रा मंगलमय हो।

0: विशेष प्रसारण आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के संग। पल पल के अपडेट्स के लिए आप जुड़े हैं हमारे साथ और हम आपको क्षण क्षण के अपडेट्स से आगाह करते हैं, आप तक पहुंचाते हैं और शेयर करते हैं। जो भी कुछ यात्रा के हवाले से हमारे पास अपडेट आता है और वो हम आपके साथ साझा करते हैं और इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं जम्मू भगवती नगर से हमारे रिपोर्टर संवाददाता जावेद मेहराब। जी जावेद जी।
1: जी देखिए, यहाँ भगवती नगर बेस कैंप की जैसे आपने बात की, यहाँ जो माहौल है एकदम शांत है। बिल्कुल जो श्रद्धालु है, जो संख्या यहाँ इस निवास स्थान में देखी है, 10,000 15,000 तक की संख्या इस निवास स्थान में देखी है और आज संख्या जरूर कम हुई है लेकिन माहौल एकदम शांत है और बिल्कुल श्रद्धालु जो है वो बड़े प्रेम से प्यार से अपनी प्रक्रियाओं में जुड़े हुए हैं। कहीं कुछ योगा कर रहा है, कोई लंगर में व्यस्त है, कहीं कोई पूजा अर्चना में व्यस्त है। तो अलग अलग तरह का एक जो श्रद्धालुओं का कार्य है यहाँ चल रहा है। मौसम एकदम साफ है अभी तक, हालांकि बादल बने हुए हैं आसमान पर और कई कई जगह पर मौसम विभाग ने बारिश की संभावनाएं भी जताई है। इसमें खास तौर पर यहाँ के पहाड़ी क्षेत्र उधमपुर और रियासी है जहाँ पे बारिशों की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है। लेकिन इस बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई जगह इन दिनों में कई बार रात को तेज बारिशों की वजह से, कई बार सुबह सवेरे तेज बारिशों की वजह से भूस्खलन के कई वाकयात सामने आए, जिसकी वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग को कई बार बंद भी करना पड़ा और कई बार भूस्खलन के बाद उसकी जो हालत है उसको बेहतर बनाने के लिए मैन एंड मशीनरी, जिस तरह से कर्मचारी और मशीनरी काम कर रही थी, वो सिर्फ यही दर्शा रही थी कि जल्द से जल्द रास्ते को खोला जाए और श्रद्धालुओं को सबसे पहले प्राथमिकता के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा घाटी की ओर रवाना कर दिया जाए। लेकिन आज ऐसा नहीं हो सका। राष्ट्रीय राजमार्ग आज तमाम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। आज दोनों तरफ से न सिर्फ श्रीनगर से जम्मू बल्कि जम्मू से श्रीनगर के लिए ट्रैफिक बिल्कुल बंद कर दिया गया और उसकी वजह ये थी कि भूस्खलन की वजह से कई जगह पर मरम्मत का काम चल रहा है, कई जगह पर ठीक करने का काम चल रहा है, कई जगह पर रास्ते को बिल्कुल अपनी पोजिशन में लाने के लिए काम जो है वो रात दिन चल भी रहा है और मौसम कई बार बाधाएं पेश करता है, बाधाएं सामने डालता है, जिसकी वजह से मशीनरी का भी काम करने में कई बाधाएं आती हैं। लेकिन इन सारी बाधाओं के बावजूद हमने इस पूरे जो ये काल रहा इस यात्रा का, उसके दौरान हमने ये देखा कि पूरी तरह से सभी लोग मुस्तैदी के साथ, सभी एजेंसी, सभी संस्थान, सभी जो लोग इस यात्रा से जुड़े हैं, खास तौर पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो काम कर रहे हैं वो रात दिन लगे हैं और पहली प्राथमिकता के साथ बाबा बरसानी के इन श्रद्धालुओं के जत्थे को रवाना भी किया जाता है और इन्हें पहली प्राथमिकता के साथ आगे भी बढ़ने दिया जाता है और जगह जगह पर इनकी सेवाएं जो उन्हें दी जाती है वो सेवाएं बखूबी उसी जोश खरोश के साथ
0: जारी
1: बिल्कुल जारी है। तो इस वजह से आज जो है कल की यात्रा को लेकर श्रद्धालु यहाँ तैयारियों में जुट चुके हैं। लेकिन हालांकि यहाँ अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली है कि कल अनुमति मिलेगी यात्रा की, क्योंकि ये सारी जो सिचुएशन है, इस सारे समय को देख के सारी एजेंसियों की रिपोर्ट्स को कश्मीर भर से जब रिपोर्ट सामने आएंगी तभी प्रशासन अलाउ करती है यात्रा को, उन्हें इजाजत दी जाती है यात्रा के लिए। तो अभी तक ऐसी जानकारी नहीं मिली है, हालांकि आज यात्रा नहीं गई, बस ये समाचार था। लेकिन श्रद्धालुओं के लिए जो बनाया गया क्रम है वो उसी जोश खरोश के साथ बना हुआ है और यहाँ से उसी जोश खरोश के साथ यात्री लगातार 27 जत्थे जो है यहाँ से बराबर हर दिन रोजाना, मौसम की कई बार परिस्थितियां नहीं दी थी लेकिन रास्ते को बेहतर बनाने के लिए जिन कर्मचारियों ने, जिन मजदूरों ने काम करके, जिस मशीनरी ने काम करके रास्ते को ठीक किया, उसके बाद पहली प्राथमिकता से साथ श्रद्धालुओं को यहाँ से रवाना होने की अनुमति मिली है और उम्मीद है कि आगे भी ये अनुमति मिलेगी। कल ही फिर से दोबारा ये जो स्थगित हुई है एक दिन के लिए यात्रा, उसको फिर से इजाजत मिलेगी। और इस दौरान जो भगवती नगर में उत्साह है, श्रद्धालुओं की संख्या कम है, लेकिन उसी उत्साह के साथ, उसी क्रम के साथ जो काम प्रबंधन के हैं, जो काम यहाँ की संस्थानों के हैं, कर्मचारियों के हैं, वो सब बराबर उसी अनुशासन के साथ यहाँ चल रहे हैं। और उसी अनुशासन में यात्रा पिछले लगभग एक महीने के ज्यादा अरसे से रवाना होती है रही है। और वही मैं बात बताऊं तो जो दर्शन कर यहाँ लौट रहे श्रद्धालु हैं, वो भी लगातार इस दौरान हमने देखा है उनको, चाहे सड़क के माध्यम से चाहे रेल के माध्यम से, लगातार वो उसी हंसी खुशी के साथ अपने साथ अपने घरों को लौट रहे हैं। और यहाँ से प्यार मोहब्बत, यहाँ की मेहमान नवाजी, और उसके अलावा यहाँ के जो सबसे मशहूर चीज है सेब, क्योंकि सेब का सीजन अब आ चुका है, पहला फल भी मार्केट में पहुंच चुका है। तो सेब की पेटियां, सेब की दुकानें आप रेलवे स्टेशन के आसपास कई देखेंगे और वहां रक्ष भी देखेंगे। उसके अलावा यहां का जो सूखा मेवा है उसको भी लेकर खरीदारी होती है। यहां साथ ही रेलवे स्टेशन के एक शो मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, तमाम तरह की दुकानें यहाँ है इस मार्केट में। खास तौर पर यात्रियों के लिए, खास तौर पर श्रद्धालुओं के लिए, उनके पास बहुत खरीदारी करने के लिए चीजें होती है, और श्रद्धालु भी पूरे मन के साथ, पूरे दिल के साथ उसमें अपनी जो खरीदारी है वो करते हैं। और यहाँ से न सिर्फ प्यार मोहब्बत, जैसे मैंने कहा कि यहाँ के मेहमान नवाजी जम्मू कश्मीर की दोनों तरफ से, जिस तरह से इस पूरे काल में जो ये मेहमान नवाजी देखने को मिली, चाहे घाटी में मिली या जम्मू में मिली, उसमें वाकई वो काबिल तारीफ है। और वो मेहमान नवाजी लगातार जारी है। यहाँ के स्थानीय बाजार एसोसिएशन, यहाँ की स्थानीय जो संस्थान है, अलग अलग धार्मिक संस्थान है, सभाएं, अलग अलग अलग अलग कास्ट की जो अलग अलग जो जैसे महाजन सभा है, ब्राह्मण सभा है, अग्रवाल सभा, अलग अलग सभाएं जो है, उन्होंने विशेष तौर पर अपने अपने आप से ही श्रद्धालुओं की सेवा में किसी भी तरह की कोई कमी, किसी भी तरह की कोई उनकी मेहमान नवाजी में कोई अभी तक कोई ऐसी
0: कमी नहीं आई,
1: कोई कमी नहीं देखने को मिली। तो एक अच्छे माहौल में जो यात्रा है वो अभी तक लगातार जारी है। संख्या जरूर कम हुई है, आप श्रद्धालु लगभग 1000 से 1500 के बीच में ही, 1500 के आंकड़े के अंदर ही ये यात्रा अब यहाँ से रवाना होती है। लेकिन उसके बावजूद जो यात्रा का प्लान यहाँ से चलता है, चाहे माता वैष्णो देवी का यात्री हो, क्योंकि यहाँ जो लोग पहुंचते हैं वो सिर्फ दाती जब वो अपना दर्शन करके आते हैं, कई बार प्लान पहले बनता है, कई बार श्रद्धालु बाद में प्लान बनाते हैं, लेकिन यहाँ के जो धार्मिक संस्थान है, यहाँ के धार्मिक स्थल है, उनकी तरफ बराबर श्रद्धालुओं का जो तनन है वो बराबर जारी है। और हमें उम्मीद है कि कल यात्रा दोबारा शुरू होगी और या जो श्रद्धालु है वो उसी जोश जज्बे के साथ यहाँ से रवाना होंगे।
0: बिल्कुल जावेद जी, हम भी यहाँ पे यही कहना चाहेंगे कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन जो भी फैसला लेती है वो हमारे जो है यात्रीज है उनकी भलाई के लिए ही लेती है। क्योंकि अगर आज की बात करें तो आज एक दिन के लिए जो है यात्रा बंद हुई है, तो कुछ ना कुछ जरूर ऐसा होगा जो हम यात्रीज के लिए ही, सुरक्षा के लिए ही किया होगा। तो हम भी आशा करते हैं कि कल जो है, कल यात्रा फिर से शुरू होगी और हमारे यात्रीज जो है बड़ी कुशलता के साथ, उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू, बहुत शुक्रिया।

0: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के संग। तो श्रोताओं, अपडेट लेकर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ अनंतनाग से एस तारिक। आइए सुनते हैं क्या कुछ अपडेट हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। जी तारिक जी।
1: बहुत शुक्रिया शाहिना जी। 57 दिनों तक चलने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा के आज 37 दिन पूरे हो चुके हैं। आज जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से पहलगाम और बालतल के लिए यात्रा निलंबित रही। पहलगाम से श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा तक यात्रा मार्ग पर आज आमतौर पर आकाश खुशगवार मगर अब आलूद रहा। भारतीय मौसम विभाग के अनुमान अनुसार दिन भर हल्की सी मध्यम वर्षा गरज चमक के साथ बूंदाबांदी और कुछ स्थानों पर तेज वर्षा के छोटे दौर देखने को मिल सकते थे, जिनकी शिद्दत दोपहर के गुजरते गुजरते शाम के समय बढ़ सकता है। इस वक्त जब पहलगाम की बात करें तो पहलगाम में मतलब अबरालूद है और अभी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन ऐसा लगता है जो वातावरण में जो हम स्थिति देख रहे हैं कि बारिश होने जा रही है। पहलगाम का पवित्र गुफा में आज अधिकतम तापमान लगभग 23 डिग्री सेंटीग्रेड है और न्यूनतम 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का अनुमान है, जबकि ऊंचे क्षेत्र में प्रातःकाल तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो लगातार भारी वर्षा के कारण यात्रा मार्ग को हुए नुकसान की मरम्मत और आवश्यक रखरखाव के मद्देनजर श्री अमरनाथ जी यात्रा को पहलगाम मार्ग से फिलहाल स्थायी रूप से संतगिस्त रखा गया है तो संबंधित विभाग यात्रा मार्ग की पुनर्बहाली और सुरक्षा से जुड़े सभी कार्रवाईयों में लगातार जुटे हुए हैं। यात्रा को पुनरारंभ करने के निर्णय मौसमी और मार्ग के पूरी स्थिति के आकलन करने के बाद ही लिया जाएगा। लगातार भारी वर्षा और यात्रा मार्ग की मरम्मत के मद्देनजर जम्मू से घाटी की ओर आज कोई जत्था नहीं आया है।
0: जी,
1: बाबा बर्फानी के पवित्र दर्शन चालू और निरंतर रूप से जारी है, जो श्रद्धालु पहले से ही यात्रा मार्ग में मौजूद है यानी पहल के मार्ग में मौजूद है और पवित्र गुफा के आसपास के क्षेत्रों में ठहरे हुए हैं। इनकी दर्शन की जो व्यवस्था हल मामूल जारी है और इस वक्त रिपोर्ट करने तक 3000 श्रद्धालुओं ने अपना दर्शन प्राप्त कर लिया है। 57 दिनों की यात्रा के आरंभ से अब तक 4,67,986 श्रद्धालु बाबा बर्फानी के पवित्र दर्शन कर चुके हैं, जबकि गुज़श्ता दिन 3,289 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में दर्शन किए हैं। तो अभी दर्शन का सिलसिला भी जारी है। तो इधर पहलगाम के नुनो नादार शिवर शिशनाग और पंचतरणी शिवरों से यात्रा हज मामूल स्थगित रही है। यात्रा मार्ग और सभी आधार शिविरों पर विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी श्रद्धालुओं की सेवा और

0: सुरक्षा और आवश्यक सहूलियात की उपलब्धता के पूरी निष्ठा के साथ खड़े हैं। सभी विभाग आपस में समन्वय और टीम वर्क के भावना के साथ यात्रा प्रबंधन को सुचारू बनाने में जुड़े हुए हैं और हर गुजरते दिन के साथ यात्रा से जुड़े सभी व्यवस्थाएं सफलतापूर्वक संचालित जा रही है। अगर सुरक्षा की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर पवित्र गुफा तक 3 सत्रीय सुरक्षा घेरे कायम किए गए हैं। सुरक्षा बलों के जवान 24 घंटे पूरी सतर्कता और मुस्तैदी के साथ अपने ड्यूटी निभा रहे हैं ताकि हर श्रद्धालु की यात्रा सुरक्षित, सुगम और मंगलमय बने रहे। जी
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद। यही कामना करते हैं कि आज दिन में जो ये आज के लिए जो ये यात्रा को बंद किया गया, तो आशा करते हैं और उम्मीद भी जताते हैं कि कल ये यात्रा फिर से शुरू हो तो हमारे यात्री जो है आगे बढ़कर बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त करें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये थे अनंतनाग से हमारे संवाददाता एस तारिक।

0: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के संग। श्रंशन के अपडेट आप तक पहुंचाना हमारी यही कोशिश रहती है। तो अभी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं रामबन से मोहम्मद तस्कीन साहब। आइए जानते हैं क्या कुछ अपडेट है इनके पास। जी तस्कीन साहब।
1: जी शुक्रिया। जैसा कि आपको मालूम है कि आज जो श्री अमरनाथ यात्रा दोनों तरफ से मतलब मुअत्तल रखी गई थी, जम्मू से भी और कश्मीर से भी किसी भी कार्रवाई को चलने की आज इजाजत नहीं थी। अलबत्ता जो बालतल से पवित्र गुफा की तरफ जाने वाले थे यात्री, तो उन्हें चलने की इजाजत दी जा रही थी। इस दौरान जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की आमदरफ्त बराबर जारी है, आज सुबह से ही दोनों तरफ से सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में मुसाफिर गाड़ियां जम्मू से कश्मीर और कश्मीर से जम्मू जा रही हैं। अभी भी ये चल रहा है, जबकि ट्रकों को एक तरफ से चलने की इजाजत है, आज कश्मीर से ट्रकों को जम्मू की तरफ आने की इजाजत दी जा रही है। इस दौरान जो बहुत सारी गाड़ियां जो बनिहाल और रामबन में रोकी गई हैं, वो गाड़ियां जो अनरजिस्टर्ड यात्रियों पर मुश्तमिल है, तो इस तरह भी 3 बजे के बाद रोका जाता है, लेकिन आज सुबह से ही ऐसी गाड़ियों का चेक किया जा रहा था बनिहाल में भी और रामबन में भी, और उन्हें बनिहाल में हाल्ट किया गया। करीबन 60-80 गाड़ियां होंगी, वो बहुत सारे टूरिस्ट से अनरजिस्टर्ड यात्री हैं, उन्हें अभी हाल्ट किया गया है और उन्हें इजाजत नहीं दी गई है। जैसा कि हम रोज अपने श्रोताओं को बोलते हैं कि 3 बजे के बाद बनिहाल टनल से किसी भी यात्रा या अनरजिस्टर्ड यात्रा जो होते हैं या जो टूरिस्ट होते हैं, उन्हें कश्मीर की तरफ जाने की इजाजत नहीं दी जाती है। और इसी तरह जो रामबन के चंद्रकूट इलाके से 2 बजे के बाद किसी भी किस्म के जो भी यात्रा

0: बजे के बाद कश्मीर की तरफ, क्योंकि हुक्काम का कहना है कि आरोपी जो 6 बजे के बाद हटाई जाती है हाईवे से, इसलिए इसके बाद किसी भी किस्म के ट्रैफिक को चलने की इजाजत नहीं दी जाती है, जिसमें यात्री हो या टूरिस्ट हो जो कश्मीर जाने वाले हो। फिलहाल जो शाहरा पर ट्रैफिक चल रहा है, दोनों तरफ का ट्रैफिक चल रहा है, हजारों की तादाद में गाड़ियां जो अपने अपनी मंजिलों की तरफ जा रही है। उधमपुर में जो प्रॉब्लम थी उधर भी वन वे के जरिए चलाया जा रहा है ट्रैफिक को, ट्रैफिक हुक्काम वहां पर मौजूद है, जिसमें SSP ट्रैफिक नेशनल हाईवे खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं और गाड़ियों को वहां पर निकाला जा रहा है। इस दौरान जो मौसमी सुरताल है वो पूरा जो रामबंद उधमपुर जो सेक्टर है इसमें सुबह से ही हल्के हल्के बादल और धूप खछाओं का खेल जो है वो अभी भी जारी है, धूप भी निकल रही है और बादल भी आ रहे हैं, तो फिलहाल जो ट्रैफिक है बगैर किसी खलल के चल रहा है। अलबत्ता उम्मीद है कि कल सुबह से यात्रा मामूल की तरफ दोबारा दोनों तरफ से बहाल की जाएगी, यानी कश्मीर से जम्मू की तरफ और
1: जम्मू
0: से
1: कश्मीर की तरफ। बिल्कुल, हमारे हम भी यही आशा करते हैं कि कल जो फिर से हमारी जो यात्रा है इसको फिर से शुरू कर दिया जाए। तो हम यही कहना चाहेंगे आपके माध्यम से भी और हमारी जो है विशेष प्रसारण इसके माध्यम से भी कि यात्रियों के लिए यही कहना चाहेंगे कि आप टेंशन ना लें, जो भी प्रशासन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो भी फैसला करते हैं ये यात्रियों के हित में करती है, तो इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो जहां पे है वही रहिए, आगे जाने की अनुमति होगी तो आप लोगों को आगे बढ़ने दिया जाएगा। तो तस्कीन साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, ये थे बानिहाल से हमारे संवाददाता मोहम्मद तस्कीन।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएम पहलगाम की संग। इसके अलावा विभिन्न प्लेटफॉर्म पर भी हम आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। श्रोताओं, जहां प्रशासन की कोशिश रहती है इस यात्रा को सफल बनाने की, वहां हमारा भी यही प्रयास होता है आपके साथ जुड़कर आप तक अपडेट पहुंचाए। तो 2 बजे तक का अपडेट आपके साथ साझा करना चाहेंगे। 2 बजे तक 2498 तीर्थ यात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए हैं। संख्या की बात करें, पुरुषों की संख्या 1560, महिलाएं 758, बालक 32, साधु 32, साध्वी 10, ट्रांसजेंडर 2 और सुरक्षाकर्मी 104। तो कुल मिलाकर हम यही कहेंगे कि 2 बजे तक जो है हमारे पास जो अपडेट आया है उसके अनुसार जो है 2 बजे तक 2498 तीर्थ यात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए हैं। अपडेट्स के लिए बने रहिए और सुनते रहिए विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026।

आई भाई कैसी शुभ घड़ी आई। चल शिव जी बिहाने देखो पार्वती माई, थोड़ी बबूती रमाई थोड़ी भंग चढ़ाई। चल शिव जी बिहाने देखो पार्वती।

0: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के संग। श्रोताओ, संस्करण के अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहते हैं हमारे साथ और हम आपकी सेवा में रहते हैं प्रातः 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। यही हमारा प्रयास होता है आपको अपडेट करें और साथ साथ हमारे संवाददाता जो हैं वो भी आपको पल पल अपडेट करते रहते हैं। तो इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता गांधरबल से रहीम रिजवान। जी रिजवान साहब।
1: जी बिल्कुल, खैर मकदम आपका भी है। और अगर हम बालतल मुखिमा की बात करेंगे तो आज भी सुबह सवेरे यात्रियों को पवित्र गुफा की ओर रवाना कर दिया गया है क्योंकि मौसम भी बिल्कुल सुहाना है। आज धूप खिली हुई है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। इन ठंडी हवाओं का आनंद लेते हैं जो बाबा बर्फानी के भक्त है। देश के विभिन्न भागों से घाटी आगमन हुए हैं और अब बालतल की तरफ रवाना हुए। और ये दो रोज कबल जो यात्री यहाँ पहुंचे हैं उनको आज सुबह सवेरे पवित्र गुफा की ओर रवाना कर दिया गया, जिसमें पुरुष, महिलाएं, बालक, बालिका, साधु, साधियां, टनल जेंडर एवं सुरक्षा कर्मी भी शामिल थे। और वो यात्री जो हैं वो ऊंचे पर्वतों के बीच पवित्र गुफा की तरफ रवाना हुए हैं। अभी तक अगर हम कह सकेंगे तो चंद ही यात्री जो हैं वो दर्शन करके सुरक्षित वापस बालतल पहुंचे हैं। और यात्रियों का बालतल वापस पहुंचने का सिलसिला जो है वो देर रात गए तक जारी रहेगा। जैसे बीते दिनों के दौरान देश के विभिन्न भागों से लाखों की संख्या में जो हमारे श्रद्धालु है वो घाटी आगमन होकर बालतल बेस कैंप पहुंचे हैं और जहां से उनको कड़ी सुरक्षा के बीच पवित्र गुफा की तरफ दर्शन के लिए रवाना कर दिया गया। दर्शन करने के बाद उन यात्रियों को सुरक्षित वापस जम्मू भगवती नगर बेस कैंप की तरफ रवाना कर दिया गया जहां वो अपनी अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवाना होंगे। अगर हम प्रशासन की बात करेंगे तो जिला प्रशासन गांधरबल ने यात्रियों की सहायता के लिए हर पड़ाव पर उच्च स्तर की सुविधाएं उपलब्ध रखी है, न सिर्फ बालतल बेस कैंप में बल्कि बालतल बेस कैंप से पवित्र गुफा तक बहुत सारे मकाम आते हैं। दुमेल आता है, ब्रारी मार्ग आता है, संगम टाप आता है, लोअर केव, अपर केव तक बहुत सारे ऐसे कठिन मकाम हैं इन ऊंचे पर्वतों के बीच। और जगह जगह प्रशासन ने तमाम सहूलियात जो हैं वो यात्रियों के लिए बहम रखी हैं। और अगर हम चिकित्सा विभाग की बात करेंगे तो ये ऊंचे पर्वतों के बीच सफर करने के दौरान यात्रियों को ऑक्सीजन की कमी जो है वो महसूस होती है, लेकिन उस कमी को दूर करने के लिए चिकित्सा विभाग ने छोटे छोटे चिकित्सा केंद्र जो हैं वो जगह जगह कायम किए हैं जहां ऑक्सीजन सिलेंडर और दीगर चीजें जो है वस्तुएं जो है वो मुहैया रखी हैं ताकि यात्रियों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और इस तरह जो चिकित्सा विभाग है उन्होंने मेडिसिन भी रखे हैं और अपने मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ जो है न सिर्फ यहाँ का बल्कि देश के बड़े बड़े हॉस्पिटल जो है वहां से मेडिकल

0: डॉक्टर्स, बड़े बड़े माहिर डॉक्टर जो हैं उनको यहाँ पे तैनात किया गया है। इसके साथ साथ जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो भी जगह जगह दस्तियाब रखे गए हैं। और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, BSF, CRPF, SSB, ITBP, NDRF, SDRF, वॉलंटियर्स के अलावा जिला प्रशासन के मुख्तलिफ विभागों के अधिकारी जो हैं उनको भी चाकू चौबंद रखा गया है। वो 24 घंटे यात्रियों की सहायता के लिए यहाँ तैनात रखे गए हैं ताकि यात्रियों को किसी प्रकार कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े और उनकी ये तीर्थ यात्रा जो है वो किसी परेशानियों के बगैर जो है वो सफल हो जाए। और इसके साथ साथ जो कारगिल राजमार्ग है इस पे दो महत्वपूर्ण जो पड़ाव आते हैं वो है ट्रांजिट कैंप साजीपोरा और ट्रांजिट कैंप मणिगांव। इन दोनों ट्रांजिट कैंपों में जो यात्री यहाँ 5 बजे के बाद पहुंचते हैं उन्हें यहाँ से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती है क्योंकि सुरक्षा जो यात्रियों की है वो महत्वपूर्ण है प्रशासन के लिए। लिहाजा 5 बजे के बाद जो भी यात्री चाहे ट्रांजिट का मणिगांव पहुंचते हैं या ट्रांजिट का साजीपोरा पहुंचते हैं उनको रात भर यही रुकना पड़ता है जहाँ प्रशासन ने उनके लिए उच्च स्तर की सुविधाएं उपलब्ध रखी है। उनकी भोजन के लिए लंगर कायम किए हैं और रहने के लिए उमदा बेडिंग टेंट वगैरह का इंतजाम रखा है। गर्म पानी और शौचालय भी बेहतरीन यहाँ पे बनाए गए हैं ताकि यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़े। और इसके बाद उन यात्रियों को भी सुबह सवेरे या तो बालतल बेस कैंप या जम्मू भगवती नगर बेस कैंप की तरफ कड़े सुरक्षा के बीच रवाना किया जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि आज भी यात्रा जो है अगर जम्मू भगवती नगर बेस कैंप से किसी भी यात्री को यहाँ घाटी आगमन होने की अनुमति नहीं दी गई है, फिर भी जो यात्री कल या परसों यहाँ बालतल बेस कैंप या साजीपोरा ट्रांजिट कैंप या मणिगांव ट्रांजिट कैंप पहुंचे उनको आज गुफा की ओर रवाना कर दिया गया। अलबत्ता बालतल बेस कैंप से किसी भी यात्री को आज जम्मू भगवती नगर बेस कैंप की तरफ जाने की अनुमति नहीं दी गई। इस तरह हम कह सकते हैं कि बालतल मुख्य मार्ग से आज भी बीते दिनों की तरह जो तीर्थ यात्रा है वो सुचारू रूप से जारी है। जी मैम
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी यही आशा करते हैं। जो आज के लिए ये यात्रा बंद हुई है तो आशा करते हैं कल फिर से शुरू होने की ये उम्मीद के साथ कि हमारे यात्री जो है वो आगे बढ़े और बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये थे रहीम रिजवान गांदरवल से।

और एफएम पहलगाम के संग डीटीएच की आराधना सर्विस एवं न्यूज ऑन एयर की मोबाइल ऐप और प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी हम आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि श्रावण महीना जो है बहुत ही महत्व रखता है। थोड़ी जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। श्रावण महीना हिंदू धार्मिक और भारतीय संस्कृति में एक बहुत ही पवित्र और विशेष महीना माना जाता है। ये महीना श्रावण मास के नाम से भी जाना जाता है और इसका संबंध सीधे सीधे भगवान शिव जी से जोड़ा जाता है। जब बारिश का मौसम शुरू होता है तब प्रकृति नई जिंदगी से भर उठती है और इसी समय भक्तों के दिल भी शिव भक्ति से भर जाते हैं। आज हम सावन महीने की महिमा, उसके त्योहार, व्रत, परंपराओं और इसके आध्यात्मिक महत्व के बारे में बात कर रहे हैं। महत्व क्या है ये हम आपके साथ शेयर करेंगे बस कुछ श्रणों में। आप सुने कुछ भजन।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के साथ। श्रोताओं, आपके साथ 3 बजे तक का जो है दर्शन अपडेट साझा करना चाहेंगे। 3 बजे तक जो है 2717 तीर्थ यात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए हैं। संख्या पुरुषों की रही है 1720, महिलाएं 799, बालक 35, साधु 35, साध्वीज 11, ट्रांसजेंडर 2, सुरक्षाकर्मी 115। तो आंकड़ा जो रहा है 3 बजे तक का दर्शन अपडेट जो हमारे पास आया है उसके अनुसार 3 बजे तक 2717 तीर्थयात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के द्वार पर माथा टेका है।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के संग। श्रोताओं, हम अभी आपके साथ जो है श्रावण महीने के बारे में आपके साथ जानकारी जो है साझा कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि श्रावण महीना हिंदू कैलेंडर के अनुसार 4 महीने के चतुर्मास का दूसरा महीना होता है। इस महीने में सूरज कर्क ऋषि में होता है और बारिश का मौसम पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है। पुरानी कथाओं के अनुसार इस महीने में समुद्र मंथन के दौरान जब विष निकला था, तब भगवान शिव जी ने उस विष को अपने कंठ में धार लिया था, इसलिए उसका नाम नीलकंठ पड़ गया। उस समय देवताओं ने शिव जी को ठंडा रखने के लिए ऊपर जल और दूध की धार चढ़ाई थी। तब से ही शिव श्रावण महीना जो है शिवलिंगम पर जल अभिषेक करने की परंपरा चल रही है। ये महीना शिव जी की कृपा का महीना माना जाता है। जो भक्त इस महीने में पूरे विश्वास के साथ उनकी पूजा करते हैं, उन्हें मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। और भी बातें इस महीने को लेकर शेयर करेंगे आपके साथ। आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026।

जुड़े हुए हैं आप विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी 2026 के संग, जो आप बालतल और एफएम पहलगाम के संग समाप्त कर रहे हैं। एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज, एफएम बालतल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और इसके अलावा डीटीएच की आराधना सर्विस एवं न्यूज़ ऑन एयर की मोबाइल ऐप और प्रसार भारती के वीवस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी हम उपस्थित रहते हैं आपके लिए। तो श्रोताओ, आपको बता दें, हम श्रावण महीने की बात आपके साथ शेयर कर रहे हैं, उसके महत्व के बारे में बात कर रहे हैं। तो श्रावण महीना जो है सबसे बड़ा और प्रमुख त्यौहार श्रावण सोमवार का व्रत है। हर सोमवार को भक्त शिव जी का व्रत रखते हैं। इस व्रत में सुबह जल्दी उठकर स्नान किया जाता है, फिर शिव मंदिर जाकर जल, बेलपत्र, दतूरा, भंग, दूध, दही, शक्कर और फूलों से शिवलिंगम का अभिषेक किया जाता है। बेलपत्रा शिवजी को बहुत प्रिय है, क्योंकि इसके तीन पत्ते ब्रह्मा, विष्णु, महेश के

प्रतीक माने जाते हैं। इस दिन फलहार किया जाता है। कई लोग सिर्फ एक बार खाना खाते हैं, शाम को आरती के बाद व्रत तोड़ते हैं। श्रावण के चार सोमवार होते हैं और अंतिम सोमवार जो है बड़ी सोमवार कहा जाता है। इस दिन व्रत के विशेष महत्व होते हैं। लोग कहते हैं कि जो व्यक्ति पूरे श्रावण महीने के चार सोमवार का व्रत नियम से रखता है, उसके घर में सुख समृद्धि आती है और उसकी मनोकामना पूरी होती है।

विशेष प्रसारण आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के संग। आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं श्रावण मंथ के महत्व को। तो यहाँ पे आपके साथ शेयर ये भी करना चाहेंगे कि श्रावण महीने में कई अन्य त्यौहार भी आते हैं। नाग पंचमी इस महीने का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस दिन नागों के पूजा की जाती है, नागों की पूजा की जाती है। लोग सांप के बिल में जो है दूध डालते हैं। जी हाँ, लोग सांप के बिल में दूध चढ़ाते हैं और उनकी रक्षा की प्रार्थना करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन नाग देवता प्रसन्न होते हैं और घर में उनका आशीर्वाद रहता है। तो श्रोताओं, ये इस महीने को लेकर, यानी कि श्रावण के महीने को लेकर हमने कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा की। उम्मीद है, आशा करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। सुनते रहिए विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल और FM पहलगाम के संग, जहां श्रोताओं आपको बता दें कि 4 बजे का अपडेट हमारे पास आया है। 4 बजे तक 2855 तीर्थ यात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए हैं। पुरुषों की संख्या 1820, महिलाएं 828,

बालक 37, साधु 38, साध्वी 11, ट्रांसजेंडर 2, सुरक्षा कर्मचारी 119। तो कुल मिलाकर 4 बजे तक 2855 तीर्थ यात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए हैं। तो साथ ही साथ आपके साथ ये सूचना भी शेयर करना चाहेंगे जो मौसम विभाग की तरफ से हमें मिली है। मौसम विभाग की तरफ से मिली सूचना के अनुसार 5 अगस्त यानी आज कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है और साथ साथ गरज चमक भी होने की संभावना है। शाम के समय में कुछ जिलों में थोड़ी देर के लिए तेज बारिश की संभावना है। तो अगर हम 6 से 8 अगस्त की बात करें, कई जगहों पर हल्के से मध्यम वर्षा और गरज चमक के इम्कान है और कुछ स्थानों पर थोड़ी देर के लिए तेज वर्षा होने की संभावना है। और 9 से 11 अगस्त की बात करते हैं, ज़्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है और साथ साथ गरज चमक भी। कुछ जिलों में तेज या बहुत तेज बारिश की संभावना है। 12 से 15 अगस्त के बात करें हम, तो कई जगहों पर हल्की वर्षा और गरज चमक होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर थोड़ी देर के लिए तेज वर्षा हो सकती है। तो मौसम विभाग की एडवाइजरी है 5 अगस्त और 9 से 11 अगस्त के बीच कुछ जिलों में तेज या बहुत तेज वर्षा हो सकती है। तेज वर्षा के कारण हसास इलाकों में अचानक बाढ़ और लैंडस्लाइड का खतरा हो सकता है। यही थी सूचना मौसम विभाग की तरफ से।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल और FM पहलगाम के संग। इसके अलावा विभिन्न प्लेटफॉर्म पर भी हम आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। श्रोताओं, इस महीने यानी कि श्रावण महीने के महत्व के बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी आपके साथ शेयर की, तो अभी हम कुछ आपके साथ और साझा करना चाहेंगे। तो वो ये है कि कहीं वर्षा होती है, कहीं हवा तेज चलती है और कहीं आंखों में आंसू और होठों पर एक नाम लेकर चल रहे होते हैं, बम बम बोले। जी हाँ, अमरनाथ यात्रा सिर्फ सफर नहीं होता, ये एक एहसास होता है। ये भारत का असली रूप है जहाँ श्रद्धा का रंग सबसे गहरा होता है। यही है अमरनाथ यात्रा। ये सफर सिर्फ मैप पे नहीं होता, ये होता है दिल के रास्ते, विश्वास के सहारे और बाबा बर्फानी के आशीर्वाद की रोशनी में।

श्री अमरनाथ यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के संग। यात्रा को सफल और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। सभी यात्रियों से ये निवेदन है, आपका सहयोग ही सबकी सुरक्षा की कुंजी है। यात्रा श्रद्धा के साथ जिम्मेदारी का भी प्रतीक है। सफाई, अनुशासन और सुरक्षा का ध्यान रखें। सभी यात्रियों से अनुरोध है कि मौसम और प्रशासन द्वारा जारी सलाह का पालन करें और बिना आवश्यकता के अपने आप को जोखिम में ना डालें। अपनी यात्रा को यादगार बनाएं, प्रकृति का सम्मान करें, सफाई बनाए रखें और अन्य यात्रियों का सहयोग करें। जी हाँ, सुरक्षित यात्रा, सफल यात्रा। सतर्क रहे, निर्देशों का पालन करें और अपनी यात्रा को सुखद बनाएं।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल और FM पहलगाम के संग। आइए श्रोताओं आरती का आनंद लेते हैं।

हरे भव दारुणम रवि कंजिलो शरीर मधुर अग्नि पद.

సర్వీకరు కన్ని రక్షత తిరుగువన్ జన్మ.

ब्रह्मा ऋषि सनकादिक ब्रह्मा ऋषि।

श्रोताओ जुड़े हुए हैं आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के साथ। तो 4 बजे का अपडेट एक बार फिर आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। 4 बजे तक 2855 तीर्थ यात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए हैं। तो संख्या 1820 पुरुष, महिलाएं 828, बालक 37, साधु 38, साध्वी 11, ट्रांसजेंडर 2 और सुरक्षाकर्मी 119। ऐसी संख्या 4 बजे तक जो है 2855 तीर्थ यात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के द्वार पर अपना माथा टेका है। तो हमारी भी यही मनोकामना है कि सभी तीर्थ यात्री जो है बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त करके अपने क्षेत्रों की ओर वापस सफलता के साथ जाएं। तो आपको बता दें, इसी के साथ ही हमारी आज की सभा जो है समाप्त तो होती है। आपको बता दें कि श्री अमरनाथ जी यात्रा के इस विशेष प्रसारण में हमारे साथ बालतल में हमारे साथी इंजीनियर्स थे समीर अहमद भट्ट, नज़ीर अहमद मीर और मोहम्मद सलीम डार। मैं आपके साथ ही उद्घोषक शाहिना ऋषि, इस विशेष प्रसारण के प्रस्तुतकर्ता श्री वसीम फारूक वानी और श्री गुलाम रसूल आखून। यात्रा का विशेष प्रसारण लिए प्रातः 6:53 पर दोबारा आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। जब तक के लिए शुभ यात्रा, शुभ रात्रि।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

गैल सूप लखा आए, पड़ल रंग में भंग औ गैल सनाका छाए। और यह देख रावण अपनी बहन का हाल मारीच को समझा बुझाकर उसे स्वर्ण मृग के रूप में पंचवटी भेजते हैं।

अपमान का बदला लेवे बदे सीखौलस। बहनी के अपमान का बदला लेवे बदे सीखौलस। काना भूसी कैलस हंस के ऐसन।

0: रावणा।
1: सीता पंचवटी में स्वर्णमृग को देखकर मोहित होकर राम जी से स्वर्णमृग मांगने का प्रस्ताव रखती हैं।

करने के लिए प्रभु श्री राम स्वर्ण मृग के पीछे चल पड़ते हैं और प्रभु राम का तीर लगने पर मारीच राम जी की आवाज में हाय लक्ष्मण पुकार उठते हैं। यह सुन सीता घबरा उठती हैं और गुस्से में जानकी जी लक्ष्मण को कठोर वचन कहते हुए प्रभु राम को खोजने के लिए वन की ओर भेजती हैं। उसके पश्चात साधु के वेश में रावण पंचवटी में सीता से भीख मांगने पहुंचते हैं।

लक्ष्मण रेखा पार करने पर रावण असली रूप धारण करके सीता का हरण करते हैं। अब राम लक्ष्मण पंचवटी पहुंचकर सीता को ना पाकर विलाप करते हुए घायल जटायु से मिलते हैं। गिद्धराज राम लक्ष्मण को सीता हरण की दिशा बताते हैं और सीता की खोज करते हुए दोनों भाई शबरी के आश्रम पहुंचते हैं। यह देख शबरी अत्यधिक भक्ति में लीन हो जाती हैं।

राजभवन और उसके बाहर नगर में भी उत्सव का रंग छाया हुआ है। राग रंग के उत्साह से भरे पुरवासी आते जाते दिखाई देते हैं और स्त्रियां नृत्य करती और गीत गाती दिखाई देती हैं।

0: श्रावण मास के पवित्र अवसर पर प्रस्तुत है द्वादश ज्योतिर्लिंग पर आधारित ये कार्यक्रम, जिसमें आज आप जानेंगे श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम ओम नमः शिवाय।
1: रामेश्वरम, जो कि तमिलनाडु राज्य के दक्षिणी हिस्से में स्थित है, भारत के प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक है। यह स्थान विशेष रूप से भगवान शिव के एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है, जिसे रामेश्वर के नाम से पूजा जाता है। रामेश्वरम का नाम रामायण के समय से जुड़ा हुआ है। मान्यता है, जब भगवान श्री राम रावण से युद्ध के लिए लंका जाने को हुए, तो उन्होंने भगवान शिव से आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ एक शिवलिंग स्थापित किया था। इसके बाद भगवान राम ने यहाँ पूजा अर्चना की, ताकि वह अपनी युद्ध यात्रा में विजय प्राप्त कर सकें। रामेश्वरम का यह शिवलिंग विशेष रूप से पवित्र माना जाता है, क्योंकि इसे स्वयं भगवान राम द्वारा स्थापित किया गया था। यही कारण है कि यह स्थान भगवान शिव के अन्य ज्योतिर्लिंगों की तरह ही अत्यधिक महत्व रखता है। रामेश्वरम का धार्मिक महत्व बहुत ही गहरा है। रामेश्वरम मंदिर भगवान राम और भगवान शिव के दोनों रूपों की पूजा का स्थल है। यह मंदिर एकमात्र ऐसा स्थान है जहां भगवान राम का मंदिर और भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग दोनों एक ही स्थान पर स्थित हैं। इस मंदिर में कई ऐतिहासिक मूर्तियां हैं। इस मंदिर की वास्तुकला दक्षिण भारतीय शैली की है, जिसमें विशाल मंडप, ऊंची स्तंभों की पंक्तियां और सुंदर नकाशी की गई दीवारें हैं। मंदिर में विशेष पूजा अर्चना

0: होती है, खासकर रुद्र अभिषेक और रामेश्वरम स्नान। श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और भगवान राम और शिव की पूजा करके अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना करते हैं। रामेश्वरम में एक विशेष संस्कार रामेश्वरम स्नान का महत्व भी है। रामेश्वरम मंदिर में जो 22 कुएं हैं, इनमें श्रद्धालु स्नान करते हैं। इन कुओं के जल को अत्यधिक पवित्र माना जाता है। यहाँ राम सेतु एक प्राचीन पुल है जो श्री राम ने लंका जाने के लिए बनाया था। यह प्राकृतिक चट्टानों की एक श्रृंखला है। इसे धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। रामेश्वरम आने के बाद भक्तों को यह अनुभव होता है कि उन्होंने एक अत्यधिक पवित्र और दिव्य स्थल की यात्रा की है। रामेश्वरम का यह ज्योतिर्लिंग हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यधिक पवित्र और महत्वपूर्ण है। यहाँ की धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्वता इसे एक अद्भुत तीर्थ स्थल बनाती है, जहाँ भगवान राम और भगवान शिव की महिमा का अनुभव किया जा सकता है। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसकी वास्तुकला, ऐतिहासिकता और सांस्कृतिक धरोहर के कारण भी प्रसिद्ध है। यहाँ के 22 पवित्र कुएं, जो पवित्र जल से भरपूर हैं, श्रद्धालुओं के लिए अत्यधिक महत्व रखते हैं। इन कुओं में स्नान करने से आत्मिक शांति और पुण्य की प्राप्ति होती है। रामेश्वरम का मंदिर भारतीय संस्कृति और धर्म का एक अभिन्न हिस्सा है, जहाँ भगवान राम और भगवान शिव की पूजा एक साथ होती है।
1: ओम नमः शिवाय। अभी आप इस कार्यक्रम के अंतर्गत श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के बारे में सुन रहे थे।

हे जगदम्ब, मैं अपनी सेवा करे करी दी। हे देवी, अपने कोई अधिक धन सामग्री के कहीं अर्पियो नथी, तो पण मुझ पर आप अनुपम स्नेह धरावो छो। एनु कारण ए छे के संसार मां कुपुत्र पैदा थई शके छे, पण माता क्यारे कुमाता बनती नथी।

अर्थात एक आदरात्रि श्याम कृष्ण वर्णवाळा कृष जेमा रक्तवाहिनी नसो देखाई रही छे एवा वृद्ध देखाता तो फैलायेल एवा वितत आकृति वाला जंगल जेवु जमनु मस्तक छे के जे अग्नि ज्वालाओ थी लपेटायेलू होय एम लागे छे। अति दीर्घा बहु लांबा अने भयंकर मुख धरावता ए कालरात्रि ए जाने आकाश ने मापवा तैयार न थया होय एवा एमने अमे प्रणाम करीए।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।